मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून सन 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 5:56 और 45 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय है वृक्षारोपण हेतु तैयारी, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
3: किसान भाइयों, आज हम वृक्षारोपण की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। जिस जमीन में बाग लगाना हो उसे इसी समय जोत दें ताकि बाग से सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। बाग की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना भी जरूरी है, या ऐसे वृक्षों को किनारे किनारे लगाना चाहिए जो कि फल वृक्षों पर छाया न डालते हों। अगर पेड़ वायु में रुकावट डालते हों तो ये फल वृक्षों से 5 से 8 मीटर दूर होना चाहिए। करौंदा, सफेदा, बांस, जामुन, कमरख आदि पौधों को बाग के किनारे किनारे लगा सकते हैं। इसी समय एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि बाग में अतिरिक्त पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो। अगर काफ़ी बड़ी बाग लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्थान सड़कों, मेड़, घर, ट्यूबवेल आदि के लिए भी छोड़ देना चाहिए। इतना कर लेने के बाद फिर बाग का रेखांकन करते हैं। जो बड़े पेड़ हैं जैसे देशी आम, कटहल, इन्हें लगभग 12 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी भी इतना ही रखते हैं। कलमी आम, आंवला, बेल जैसे वृक्षों को लगभग 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अमरूद, बेर को 6 से 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। नींबू, संतरा आदि को 4 से 6 मीटर की दूरी पर।

0: अंगूर और करौंदा को 3 से 4 मीटर पर तथा केला और पपीता को 2 से 3 मीटर की दूरी पर रोपते हैं। यदि हम कलमी आम को 10 मीटर पर लगाने जा रहे हैं तो वृक्षों की पहली लाइन को मेड़ से 5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं और बाकी लाइनें 10-10 मीटर की दूरी पर बनती हैं। इन लाइनों में जो पहला पेड़ लगाएंगे वो भी आधी दूरी पर ही होगा, यानी लाइन का पहला पेड़ 5 मीटर पर होगा तथा बाकी पेड़ 10-10 मीटर पर लगेंगे। इस प्रकार जो भी वृक्ष लगाना हो उसकी लाइन एवं पौधे से पौधे की दूरी के अनुसार रेखांकन करना चाहिए। रेखांकन कर लेने के बाद गड्ढे की खुदाई करने का नंबर आता है। अगर देसी आम या कटहल के वृक्ष लगाते हैं तो 1.25 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अगर कलमी आम या आंवला लगाते हैं तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अमरूद या बेर लगाते हैं तो 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अगर नींबू या संतरा लगाते हैं तो 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढों की खुदाई का कार्य मई जून में ही कर लेना चाहिए। गड्ढा खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ तथा नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रख देते हैं और गड्ढों को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढों की भराई करते हैं। गड्ढे की ऊपर वाली मिट्टी चूंकि ज़्यादा उर्वर होती है अतः इस मिट्टी को लेते हैं। इसमें 4-5 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके गड्ढे की भराई करते हैं। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में दीमक की समस्या भी होती है जो कि जड़ों को काट देते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे स्थानों पर दीमक से बचाव के लिए लिंडेन चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसकी 50 से 100 ग्राम मात्रा पेड़ के आकार के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। गड्ढे को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरते हैं। इसके बाद फिर रोपाई का कार्य किया जाता है। रोपाई का समय सभी वृक्षों का अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर रोपाई का कार्य करना चाहिए। वृक्षारोपण हेतु ये ध्यान देना जरूरी है कि पौधा किसी विश्वसनीय जगह या सरकारी विभाग से ही खरीदें तथा वह पौधा कलम या चश्मा के बाद कम से कम 9 माह तक नर्सरी में होना चाहिए। पौधा खोदते समय उसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तथा गोले सहित खोदने के बाद उसे बोरे या अल्काथीन से बांध देना चाहिए। इसकी खुदाई का कार्य बरसात में किया जाता है जब जमीन एवं वातावरण में नमी रहती है। जब इसे लगाएं तो अच्छी तरह से पिंडी के आकार का गड्ढा खोदकर पौधे को रोपकर उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण के लिए तैयारी करना चाहिए और फिर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था वृक्षारोपण हेतु तैयारी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी हैं। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है।

जो लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं उन्हें वाणी मन इंद्रियों की पवित्रता और दयालु हृदय की ज़रूरत होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी कैलाश अनुज, अनुराधा पौडवाल और मनहारू दास की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है प्रकृति और मानव जीवन। आलेख और स्वर अरुण पांडे का।
1: मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत, सूरज चांद तारे दीपक, सागर नदी पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए प्रकृति से अच्छा कोई गुरु नहीं है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ हासिल किया वो सब प्रकृति से सीख कर ही किया है। न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को गुरुत्वाकर्षण समेत कई पाठ प्रकृति ने सिखाए हैं, तो वहीं कवियों ने प्रकृति के सानिध्य में रहकर एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी। इसी तरह आम आदमी ने प्रकृति के तमाम गुणों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब वृक्ष का अंत नहीं है। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्म

0: साथ किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इस तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके वृक्ष हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा सा कीट भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। इसी कारण हमारे यहाँ वृक्ष पूजने की सनातन परंपरा रही है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य नए वृक्ष लगाता है वो स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक उसके लगाए वृक्ष फलते फूलते हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी चीजों का उपयोग स्वयं नहीं करती। जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू पूरे वातावरण में फैला देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करती। सुख और दुख जीवन के दो चक्र हैं। इनमें से कोई भी चक्र सदैव नहीं बना रहता, फिर भी दुख की अवस्था में हमारा मन अवसाद और पीड़ा से घिर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रकृति से सीख लेने की आवश्यकता होती है। पतझड़ के समय जब पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, तो ये वृक्ष का अंत नहीं है, वृक्ष धैर्यपूर्वक वसंत की प्रतीक्षा करता है, जब नई कोपलें दस्तक देती हैं। इसी प्रकार जब जीव जंतु शीत निद्रा में चले जाते हैं तो वे अपने भीतर ऊर्जा संचित कर पुनः सक्रिय होने की तैयारी करते हैं। अर्थात कठिन परिस्थितियां हमें परखती हैं और हमें अनुभवी और दृढ़ बनाती हैं। जीवन में जब भी आगे की कोई राह न सूझे तब हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। परिस्थितियों से अनुकूलित होकर हम अपने भीतर की ऊर्जा और रचनात्मकता को संरक्षित करें। जिस तरह प्रकृति हर कठिनाई के बाद नव जीवन को प्राप्त करती है, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हर दुख के बाद सुख और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृति को एक गहन शिक्षक के रूप में वर्णित किया है। प्रकृति प्रेमी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। उनका दर्शन यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन, खुशहाली और रचनात्मकता के लिए हमें प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आए उसका समाधान संभव है। हम अपने जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बना सकते हैं, बशर्ते हम प्रकृति के सानिध्य में रहकर उससे प्रेरणा लेना सीखें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था प्रकृति और मानव जीवन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आज का विषय है हार्निया, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश।
2: प्रेम प्रकाश, कंसल्टेंट सर्जन एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल वाराणसी। आज एक बार फिर से आपके बीच में हार्निया विषय पे चर्चा को रखने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने कल आप लोगों के बीच में चर्चा रखी थी, हार्निया के क्या कारण होते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं। अब ये बात हो गई कि हार्निया हो गए, इसको कैसे हम इन्वेस्टिगेट करें, क्या क्या जांचें करें। जांच में वही रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो एनेस्थेसिया के पर्पज से होता है उसको कराते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, उसमें भी हार्निया डायग्नोज हो जाता है, या किसी कॉम्प्लिकेटेड केस में कभी कभी सीटी स्कैन एब्डोमेन का भी करना पड़ता है। अब हो गई बात कि हार्निया डायग्नोज हो गया, अब करना क्या है। एक स्थिति होती है अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया।

0: जिसमें आप खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं, कोई भारी वजन उठाते हैं, तो एक उभार दिखता है, लेकिन वो अपने आप रेस्ट आप लेते हैं, लेट जाते हैं तो अंदर चला जाता है। इसको अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं। खासतौर से जो देहातों में है, जहां स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है, वहां लोग इसको इग्नोर करते हैं। दवाओं के सेवन के लिए वहां जो चिकित्सक होते हैं उनको कहते हैं, और जो इतने जानकार नहीं होते वो भी उनको कुछ दवा दे करके रखते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हर्निया यदि बीमारी हो गई तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, कोई दवा से वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अनावश्यक दवाओं के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, और जो योग्य चिकित्सक हैं उनके पास जाना चाहिए। बेहतर होगा कि अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ही आप इसकी सर्जरी करवा लें, तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। कोई नहीं जानता कि एक अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कब कॉम्प्लिकेटेड हर्निया के रूप में प्रस्तुत हो जाए, कोई नहीं जानता। यदि हर्निया में कॉन्टेंट बॉवेल आ रहा है, आंत आ रही है, कब जाके वो वहां फंस जाए, कब उसके ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाए, कोई नहीं जानता। तो बेहतर यही है कि जितना जल्द हो योग्य चिकित्सक के पास पहुंच करके उसका इलाज कर लें। इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग इलेक्टिव ऑपरेशन कहते हैं। और एक कंडीशन होता है जब आंत फंस गई, वहां उसकी खून की सप्लाई जो है हैम्पर्ड हो गई, जिसको हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, वो एक डायर इमरजेंसी होती है और इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ता है। और हो सकता है कभी कभी पेशेंट बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में भी ऑपरेशन करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है, डायर इमरजेंसी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा न होने दे, जागरूकता आप लोगों के बीच में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप जानिए इस बीमारी को, अनावश्यक समय को न बर्बाद। हर्निया में क्या होता है, तीन तरीके के हर्निया के ऑपरेशन होते हैं। एक कहते हैं हर्नियोटॉमी, जिसमें हर्निया जो सैक, जिस सैक से कंटेंट आता है, उसमें एक ओपनिंग बनाते हैं और ओपनिंग बना के उस कंटेंट को रिड्यूस करके और उसको बांध देते हैं, हर्नियोटॉमी इसको कहते हैं। ये यूजुअली बच्चों में किया जाता है। दूसरा ऑपरेशन है हर्नियोरेफी, जिस बेड पे हर्निया का कंटेंट होता है उस बेड को हम लोग स्ट्रेंथेन करते हैं, सूचर से उसको, धागों से उसको मजबूत करते हैं। और तीसरी टेक्निक जो होती है, जिसमें वाल को स्ट्रेंथेन करने के लिए हम लोग जाली लगाते हैं, जिसको कि मेस कहते हैं, और इस ऑपरेशन को हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। दो तरीके से करते हैं, एक ओपन तरीके से करते हैं जिसमें चीरा लगाते हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, और दूसरा आजकल बहुत कॉमन है हम लोगों के बीच में, लैप्रोस्कोपी विधि से करते हैं। उसमें मरीज बहुत जल्दी घर भी चला जाता है, बहुत अच्छा आउटकम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर्निया विषय पे कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था हर्निया, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रेम प्रकाश। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन

मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानसी संगीत में पाठ। आज के गायक कलाकार थे सिप्रा बोस और राम कृष्ण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे और शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सितार वादन आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर। कलाकार होंगे आनंद कुमार मिश्रा। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 12:45 पर आप सुनेंगे गायन। कलाकार होंगे प्रतीची सहस्त्रबुद्धे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आबिदा परवीन का सूफी गायन। और इसी में 12:30 पर आप सुनेंगे मनोहर सिंह के गाए भजन। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:31 पर रसरंग में, शाम 6:10 पर और सुबह 10 बजे झनकार में।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें आज का विषय होगा मुर्गियों में कृत्रिम उष्मायन और चूजों की हैंचिंग। इस विषय पर बातचीत करेंगे अनुराधा कुमारी से सतीश कुमार। इसी में श्रोता सुनेंगे श्याम सुंदर पाल के गाये लोकगीत। इन्हीं के गाये लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दोपहर 1:45 और सुबह 9:50 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाड़ी हमले कराएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ श्रोता सुनेंगे यूथ डायरी, आज की बात, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। शाम 5 बजे आप सुनेंगे धरती के गीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कहकसा कार्यक्रम। महिलाओं का कार्यक्रम अंगनैया आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी। दिन 12 बजे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आपके पहले से आए हुए ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम फरमाइसी गीत एक्सप्रेस हम लेकर आएंगे दिन 11 बजे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर, और गुड मॉर्निंग बनारस हम लेकर आएंगे सुबह 7 बजे। श्रोताओं एक बार आपको फिर से बता दें कि रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे, और शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: उससे अप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक मस्त और चकाचक हैं। हालांकि गर्मियां बहुत ज्यादा है, जून का महीना आ चुका है, लेकिन कोई नहीं, ये वक्त भी कट जाएगा। अच्छा बनारस, जीवन की सच्ची संतुष्टि तुरत फुरत नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों और धैर्य से प्राप्त होती है, है ना? एग्री करते हैं ना आपस से? आज की क्लिक और स्क्रॉल वाली दुनिया में जहां सब कुछ पलक झपकते ही उपलब्ध है, लोग धैर्य और संतुष्टि दोनों को ही खोते जा रहे हैं। आज के दौर में अगर किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो गूगल की सहायता से तुरंत मिल जाता है। अगर भूख लगी है तो 10 मिनट में भोजन घर पर होता है। लेकिन इस तुरंत पाने की चाह ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार पर एक गहरा प्रभाव डाला है।

इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तत्काल संतुष्टि की लालसा वो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जिसमें आदमी अपनी इच्छाओं या जरूरतों को बिना किसी देर के तुरंत पूरा करना चाहता है। सरल शब्दों में कहें तो ये अभी और इसी वक्त परिणाम चाहने की जिद है। इसके चलते लोग गहरे और लंबे कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत हो जाती है और जब चीजें

कार्य क्षेत्र में भी समय और अनुभव के साथ धीरे धीरे मिलने वाली पदोन्नति के बजाय तुरंत परिणामों की अपेक्षा होती है। इसमें कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अब लगभग हर कोई लंबी प्रक्रिया वाली सफलता के बजाय रातों रात मिलने वाली प्रसिद्धि की तलाश में दिखता है। सोशल मीडिया के कारण युवाओं में धैर्य की भारी कमी देखी जा रही है। आभासी संसार में अब कोई हमारी फोटो पर लाइक करता है या सकारात्मक टिप्पणी करता है तो हमें वैसे ही खुशी का अनुभव होता है जैसे किसी पुरस्कार मिलने या किसी प्रतियोगिता में जीतने पर होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस छोटी सी अस्थायी खुशी के आदि हो जाते हैं। अब किसी पोस्ट पर उम्मीद के मुताबिक प्रतिसाद नहीं मिलता तो ये बेचैनी, उदासी और चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना डिजिटल एंजाइटी और डिजिटल डिप्रेशन का कारण बन गया है। तो ऐसे में अधीरता, व्याकुलता और व्यवधान से भरी दुनिया में कागज और कलम जैसी साधारण सी चीजें आपको बचा सकती हैं। दिन भर स्क्रीन पर चलने वाली उंगलियां मन मस्तिष्क को थका डालती हैं। अपनी उंगलियों को विराम दीजिए और उनमें एक कलम थाम लीजिए। बेशक डिजिटल तकनीक सुविधाजनक है, लेकिन जब बात जटिल विषयों को समझने, नई योजनाएं बनाने या गहराई से सीखने की हो तो न्यूरोसाइंस पेन, पेंसिल और कागज को ही विजेता मानता है। कागज और कलम का उपयोग पुराने जमाने की बात भले ही लग सकती है, लेकिन शोध बताते हैं हाथ से लिखना तत्काल संतुष्टि की घातक लत पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। पेंसिल और कागज का उपयोग करने पर मस्तिष्क का एक पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। दरअसल पेन, पेंसिल और कागज का उपयोग केवल लिखने की क्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक विश्राम भी है। ये याद दिलाता है कि जीवन की सबसे गहरी संतुष्टि तुरंत बटन दबाने में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे गढ़े गए अनुभवों और विचारों में निहित है। जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो विचारों और शब्दों की गति बहुत तेज होती है, जो जल्दबाजी की आदत और अधीरता को बढ़ा देती है। इसके विपरीत कागज पर लिखना एक धीमी और सचेत प्रक्रिया है। हमारे मस्तिष्क को धीमे होने का संकेत देने के साथ साथ ये हमें अपने विचारों को संसाधित करने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अवसर देता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम तुरंत फीडबैक की उम्मीद करते हैं, लेकिन डायरी लिखने या पत्र लिखने में कोई लाइक या कमेंट बटन नहीं होता। यहाँ परिणाम तुरंत नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति अपनी योजनाओं या इच्छाओं को कागज पर उतारता है तो वो अनजाने में ही धैर्य का अभ्यास कर रहा होता है। ये प्रक्रिया सिखाती है कि महत्वपूर्ण चीजें समय और प्रयास मांगती हैं। तकनीक हमें रफ्तार भले ही दे सकती है, पर कलम वो ठहराव देती है जिसकी आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अपनी डिजिटल दिनचर्या में से कुछ पल जरूर निकालिए और अपनी रचनात्मकता को विस्तार दीजिए, ताकि आप सृजन की वास्तविक खुशी को अपने भीतर महसूस कर सकें। गुड मॉर्निंग बनारस।

हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 4 जून 2026 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में खास। देखिए, जिले में बिजली निगम से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, नया कनेक्शन लेने, स्मार्ट मीटर संबंधी गड़बड़ी, गलत बिजली बिल के साथ ही सोलर संबंधी समस्याओं को लेकर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। स्थानीय स्तर पर भिखारीपुर MD कार्यालय में 1912 का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यहाँ शिकायत का समाधान कराया जा सकता है। इसके साथ ही बनारस रेलवे स्टेशन पर नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत 12 मीटर चौड़ाई वाले इस तीसरे फुट ओवर ब्रिज के बनने के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 तक आने जाने में सहूलियत होगी। इससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव भी कम होगा। इसके लिए स्टेशन पर काम शुरू हो गया है। इसके अलावा स्टेशन पर एक और एस्केलेटर भी लगाया जाएगा। बनारस रेलवे स्टेशन से इस समय प्रतिदिन 40 से अधिक ट्रेनें दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, आगरा, पुणे, सोमनाथ, देहरादून जैसे स्थानों के लिए संचालित होती हैं। वर्तमान में यहां 2 फुट ओवर ब्रिज है जिनसे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक

आते जाते हैं। दो अमृत भारत और दो वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के कारण यहां यात्रियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। नया फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर से बनना शुरू होगा। इसके बाद सभी प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़ जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने बीते मंगलवार को हुए निरीक्षण के बाद ये माना जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी आएगी और अधिकारियों ने भी नए सिरे से काम की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2 जून का नौतपा काल समाप्त हो चुका है और कल बुधवार को काशी का तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। प्री मॉनसून सीजन में 5 दिन बाद शहर में इतनी गर्मी दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2026 के नौतपा में 9 दिनों का औसत अधिकतम तापमान 39.47 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले वर्ष के नौतपा की तुलना में करीब 4 डिग्री ज्यादा रहा। ईयर 2025 में नौतपा के दौरान अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री से 42.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था, जबकि इस बार 25 मई को नौतपा की शुरुआत हुई तो शुरुआती 3 दिनों तक तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। चौथे दिन से पारा 40 डिग्री से नीचे आना शुरू हुआ और 2 जून को नौतपा 39.8 डिग्री सेल्सियस पर समाप्त हुआ। पिछले वर्ष नौतपा का समापन 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान और तेज लू के साथ हुआ था। बुधवार को काशी का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने 4 से 7 जून के बीच बादल छाने और बारिश की संभावना जताई है। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका, यूएई, ब्राजील, चीन सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि कल बुधवार को काशी पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेशी प्रतिनिधियों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। लोक कलाकारों ने धोबिया, कर्मा और नटवरी जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। छात्र छात्राओं ने भी अलग अलग देशों के झंडे लहराकर अतिथियों का अभिनंदन किया। स्वागत के जरिए ही विदेशी प्रतिनिधियों को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराए गए, भारतीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता के अनुसार एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। दोपहर 3:05 पर दक्षिण अफ्रीका की प्रतिनिधि क्लीन नोवा जोसेफ मोगेथी और मसाना चिकेका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की फातिमा अल सुवेदी और शथा अल मुल्ला वाराणसी पहुंची हैं। इसी तरह सुबह 11:48 पर ब्राजील के लुकास गुडाए विलेला और चीन के झांग हॉलेन और तेंगयुआन भी वाराणसी पहुंचे। बैठक में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के 30 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भदोही में आयोजित अंडर 23 प्रादेशिक कुश्ती प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में 7 और महिला वर्ग में 4 समेत कुल 11 पदक हासिल किए गए। इस प्रतियोगिता में सिगरा स्टेडियम के 8 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें से 2 खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीता, जबकि स्वामीनाथ अखाड़े के 4 खिलाड़ियों में सिर्फ 1 खिलाड़ी कशिश स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही। वाराणसी कुश्ती संघ के राजीव सिंह रानू अध्यक्ष ने बताया कि पुरुष वर्ग में काशी के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किया, जबकि महिला वर्ग में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित कुल 4 पदक मिले। पुरुष वर्ग के फ्री स्टाइल के 57 किलो में सिगरा स्टेडियम के आशुतोष पाल ने कांस्य, 65 किलो में गौराकला के शिवम यादव ने स्वर्ण और नैपुरा अखाड़े के शिवधनी यादव ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग के ग्रीको रोमन के 67 किलो में सिगरा स्टेडियम के मनीष यादव ने रजत, 72 किलो में सिगरा स्टेडियम के अभिषेक यादव ने स्वर्ण, 77 किलो में सारनाथ के विकास पाल ने स्वर्ण और 82 किलो में गया सेठ अखाड़े के ऋतिक यादव ने रजत पदक हासिल किया। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री and special events of today, that is 4th of June. आपको बता दें कि आज ही के दिन हरियाणा सरकार ने 2008 में पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की। इसके साथ ही आज ही के दिन हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक नूतन का जन्म 1936 में हुआ। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का भी जन्म आज ही के दिन ईयर 1959 में और अमेरिकी अभिनेता

पुत्री एंजेलिना जॉली का भी जन्म आज ही के दिन ईयर 1975 में हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। एंड नाउ बनारस, लेट्स मूव ऑन टू योर फेवरेट सेगमेंट, बात जरूरत की। देखिए, गर्मियों में तेज धूप और पसीने की वजह से प्यास ज्यादा लगती है, साथ ही नहाने, खाना पकाने और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के कामों में भी पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करना जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी लापरवाही से नहाने, खाना पकाने और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ आसान आदतों से इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम पानी को सही तरीके से स्टोर करने के आसान टिप्स समझेंगे, साथ ही जानेंगे गर्मियों में पानी की किल्लत क्यों होती है और गर्मियों में घर में कितने पानी का स्टोरेज होना चाहिए। देखिए, गर्मियों में पानी की किल्लत इसलिए होती है क्योंकि डेली खाने पीने, नहाने, कूलर में डालने और खेती के कामों में पानी की खपत बढ़ जाती है। शहरों में एक साथ ज्यादा पानी इस्तेमाल होने से सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। जरूरत से ज्यादा बोरवेल और ट्यूबवेल चलाने से ग्राउंड वाटर सोर्स नीचे चला जाता है। बारिश कम होने और लगातार पानी की खपत से ग्राउंड वाटर सोर्स सीमित हो जाते हैं। कई घरों में पर्याप्त पानी स्टोर करने की व्यवस्था नहीं होती तो समस्या होती है। गर्मियों में पानी की जरूरत बढ़ती है लेकिन सप्लाई कम होती है, इसलिए पानी स्टोर करने से मदद मिलती है। गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए घर में एक्स्ट्रा पीने का पानी जरूर रखना चाहिए। नहाने, खाना बनाने और साफ सफाई जैसे जरूरी काम के लिए भी पानी स्टोर करना जरूरी है। पाइपलाइन खराब होने, बिजली सप्लाई बाधित होने या अन्य इमरजेंसी में स्टोर किया गया पानी बैकअप का काम करता है। बार बार पानी भरने की परेशानी से बचने और सभी जरूरतें बिना तनाव के पूरी करने के लिए पानी स्टोर करके रखना जरूरी है। देखिए, गर्मियों में पानी का स्टोरेज परिवार के सदस्यों की संख्या और जरूरत पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति को पीने से लेकर बेसिक इस्तेमाल तक औसतन 100 से 135 लीटर पानी की जरूरत होती है। ड्रिंकिंग वाटर औसतन 5 से 7 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्टोर करना चाहिए। अचानक सप्लाई बंद होने की स्थिति को देखते हुए हर घर में 2 से 3 दिन का पानी जरूर स्टोर होना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं तो रोज लगभग 500 से 600 लीटर पानी लग सकता है। ऐसे में कम से कम 1000 से 1500 लीटर स्टोरेज रखना सुरक्षित माना जाता है। अगर कूलर, गार्डनिंग या ज्यादा पानी वाले काम है तो स्टोरेज क्षमता और बढ़ानी चाहिए। पानी स्टोर करते समय साफ सफाई का खास ख्याल रखना जरूरी है ताकि पानी दूषित ना हो। पानी हमेशा साफ, ढके हुए और फूड ग्रेड बर्तनों में स्टोर करना चाहिए। स्टोरेज कंटेनर को नियमित रूप से धोना और सुखाना जरूरी है ताकि उसमें बैक्टीरिया या कोई जर्म्स न जम सके। देखिए, वाटर स्टोरेज का जो सही तरीका होता है वो डेली यूज के लिए तो होता है कि ढक्कन हमेशा बंद रखें, टैंक ओवरफुल ना होने दें, मच्छर धूल से बचाव करें, टैंक में दरार या जंग ना लगने दें और हर हफ्ते सफाई करें, और पीने के पानी के लिए उसे अलग स्टोर करें, कंटेनर साफ सूखी जगह रखें, हाथ सीधे पानी में ना डालें, कंटेनर नियमित साफ करें, ढक्कन हमेशा बंद रखें और फूड ग्रेड कंटेनर यूज करें। पानी को दूषित होने से बचाने के लिए पानी ढक्कन हमेशा बंद रखें, रेगुलर सफाई करें, आसपास सफाई रखें, गिलास डिस्पेंसर यूज करें, 24 घंटे में पानी बदलें, बासी ताजा पानी मिक्स ना करें, टेस्ट या स्मेल बदले तो सफाई करें और क्लोरीन की गोली डालें। पीने के लिए फिल्टर्ड या उबला पानी आप यूज कर सकते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके काफी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। जैसे ब्रश करते हुए नल को बंद रखें, शावर कम यूज करें, बाल्टी मग से नहाएं, आरओ का वेस्ट पानी पौधों में डालें, लीकेज तुरंत ठीक करें, पाइप से गाड़ी न धोएं, कपड़े एक साथ धोएं, कम फ्लो वाले नल लगाएं, टंकी ओवरफ्लो ना होने दें, बच्चों को पानी बचाना सिखाएं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएं। प्लास्टिक कंटेनर में लंबे समय तक पानी स्टोर करना सही नहीं होता है, इसलिए केवल फूड ग्रेड प्लास्टिक ही सुरक्षित होता है। धूप में रखने से केमिकल रिलीज हो सकते हैं, बार बार इस्तेमाल से बॉटल खराब हो सकती है और लंबे समय के लिए स्टील या कांच बेहतर विकल्प है। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्युएबल व्यूज ऑन pklgaarvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे, और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था

0: व्यवस्था, आगामी आरक्षी की नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
3: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
4: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
5: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
6: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
5: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे सितार वादन। आज के कलाकार हैं आनंद कुमार मिश्रा, राग है अहिर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अमित कुमार ईश्वर।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सितार वादन। कलाकार थे आनंद कुमार मिश्रा, राग था अहिर भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अमित कुमार ईश्वर। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: खर्च के पैसे दूं हस्बैंड जी?
1: ये राशि 2000।
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों

0: के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश

0: के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
1: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच डिस्काउंट प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से

0: व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टू

0: फूट 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investments in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC.

0: And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. The headlines in all the dailies are full with the tragic news of one of the deadliest fires in Delhi in recent years. Hindustan Times writes, safety gaps spark another tragedy as 21 die in blaze that swept through the five-story hotel located in a narrow lane crowded locality in South Delhi. An editorial in The Hindu writes on how India scaled its startup industry from 2016 to 2025. The Startup India scheme has truly come of age due to the supportive policy environment, robust startup growth and a positive investment climate. Cabinet backs ordinance to ease tax rules for foreign investors in some securities, states the Times of India. The Economic Times comes up with a story on domestic travel demand remains strong despite rising fuel costs and airfares and fewer flights under the headline Summer Travel Plans Take No Break. And finally, the Tribune writes about a memorable moment when the Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama, was presented with a Grammy Award won by his audiobook Meditations, The Reflections of His Holiness. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Kerala and Mahi today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू जेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने के खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवियत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल

0: वो बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज्म व ज़ब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इसलाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है, जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है, जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बरह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इसलाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है, इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, खवातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की सीएमडी कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीकेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जैम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में

0: मेजबान भारत गोवा के मारगाओ में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इक्तदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरला और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे एक छोटी सी संदेश के बाद।
3: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
4: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
3: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।
4: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
5: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में।
4: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने सेल्फी लेते हैं ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
6: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
7: औरों को भी सिखाओ।
8: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
11: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
10: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
11: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
10: बुकिंग है तो संपर्क करें
12: 0542227658
13: 0542227658।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मधुरिमा और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की जो हमारे जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी कभी एक मुस्कान, किसी अपने का साथ, बरसात की पहली फुहार या बचपन की कोई प्यारी याद हमें वो सुकून दे जाती है जो बड़ी से बड़ी सफलता भी हमें नहीं दे पाती। तो आइए आज के इस मधुर सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, खुशियाँ हमेशा बड़ी नहीं होती। सुबह की ताजी हवा, चाय की पहली चुस्की, माँ की आवाज़ या किसी दोस्त का अचानक आ जाना, ये सब छोटी बातें हैं लेकिन दिल को सुकून देने वाली होती हैं। कभी सोचिए कि बचपन में कितनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती थी। बारिश में भीगना, पतंग उड़ाना या बिना किसी वजह के हंसना। जैसे जैसे हम बड़े हुए, खुशियों के मायने भी बड़े होते गए और शायद इसी कारण खुशियाँ छोटी पड़ती गईं। लेकिन सच तो ये है कि खुशी आज भी वही है, बस उसे देखने की नज़र चाहिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा, और ये कार्यक्रम लेकर आई हूं मैं आज आपकी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी। श्रोताओं, जीवन हर दिन एक नया अवसर लेकर आती है। कभी सूरज की पहली किरण हमें उम्मीद देती है, तो कभी किसी अपने का एक संदेश पूरा दिन खुशनुमा बना देता है। हम अक्सर शिकायतों का हिसाब रखते हैं, लेकिन खुशियों का नहीं। अगर हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद कर लिया जाए, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर लगने लगेगी। क्योंकि खुशियां खरीदी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।

दोस्तों, रिश्ते भी खुशियों का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। जिन लोगों के साथ हम हंस सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, वही लोग हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। कभी किसी अपने को धन्यवाद कहिए, किसी पुराने मित्र को फोन कीजिए या घर के बुजुर्गों के साथ कुछ पल बिताइए। यकीन मानिए, ये पल आपकी सबसे कीमती यादें बन जाएंगी। खुशियों का एक ही नियम है, जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी।

दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराने की कला सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। फूलों की खुशबू तभी महसूस होती है जब हम रुक कर उन्हें सूंघते हैं। उसी तरह जीवन की सुंदरता तभी महसूस होती है जब हम थोड़ी देर ठहर कर अपने आसपास की खुशियों को देखें। आज जब आप अपने दिन को याद करें तो उन छोटी छोटी बातों को भी याद करें जिन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई। तो श्रोताओं, आज के इस मधुरिमा कार्यक्रम में हमने जाना कि खुशियाँ कितनी बड़े अवसर की या किसी बड़े अवसर की मोहताज नहीं होती। वो हमारे आसपास बिखरी रहती हैं, कभी रिश्तों में, कभी यादों में, कभी प्रकृति में और कभी हमारे अपने मन में। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि वे छोटी छोटी खुशियां हैं जो हर दिन हमारे हिस्से में आती हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ अपनी रेडियो हमसफर नीलू तिवारी को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिदिशन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालु

0: वालों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज के SB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकल, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में अपर जिला अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया।

0: की जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छविलाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार हिरण राजभर पुत्री सीताराम ग्राम सोनबरसा पोस्ट और थाना चौबीपुर जिला वाराणसी से दिनांक 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 10 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 25 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फीट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चौबीपुर को सूचित करें। अब लीजिए सुनिए हमारी अगली सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार वंदना पटेल पुत्री संतोष पटेल ग्राम रतनपुर पोस्ट और थाना बड़ा गांव जिला वाराणसी से दिनांक 10 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 19 वर्ष, रंग गेहूं और लंबाई 4 फुट 2 इंच है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना बड़ा गांव जिला वाराणसी को सूचित करें। अब लीजिए सुनिए अगली सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार मिथिलेश पांडे पुत्र चंदन कुमार पांडे ग्राम बुचेया थाना सिद्धवलिया जिला गोपालगंज से दिनांक 20 मार्च 2026 सुबह 10 बजे रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 40 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 4 इंच है। इनकी आवाज़ तोतली है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार साजिद मोहम्मद पुत्र अफसर अंसारी A40/53 अमरपुर मडिया मछली मंडी थाना जैतपुरा वाराणसी से दिनांक 20 मार्च 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना जैतपुरा को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त दशा स्वमेघ वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रामाराव लिंगम पुत्र उमा माहेश्वर राव लिंगम थाना बजपुकुद दूर जिला श्री काकुलम आंध्र प्रदेश से दिनांक 14 फरवरी 2026 मीरघाट से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 56 वर्ष, लंबाई 172 सेंटीमीटर, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना दशा स्वमेघ कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। इसी के साथ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

केवल काली पुतली का दान ज्योति दान, नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं। नेत्रदान का संकल्प आज ही लें। ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए, जीवन जीते रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, बैतबाजी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से आपने हमारे बैतबाजी प्रोग्राम को मोहब्बत दी, उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। सामईन, चलिए अब हम आज की बैतबाजी की तरफ रुख करते हैं। आज की बैतबाजी में जिन दो टीमों ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा है, उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से है। इन टीमों की बात करें तो टीम ए में हैं मोहतरम जनाब इम्तियाज अली साहब और मोहतरमा कहकशा खातून साहिबा, और टीम बी में हैं मोहतरमा दरख्शा खातून साहिबा और मोहतरम जनाब यूसुफ आरिफ साहब। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस बैतबाजी में खैर मकदम है। अब मैं इस बैतबाजी का बाकायदा आगाज करता हूँ। आइए, टीम ए के लिए अब मैं अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, मुझको अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा, और थी शबे तारीख चोर आए जो कुछ ठले गए, कर ही क्या सकता था बंदा खांस लेने के सिवा। अलिफ टीम ए के लिए।
1: अजियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो,
0: वाह।
1: अजियतों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो, बड़ी मोहब्बत से पूछता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है,
0: क्या हुआ है। ये कैसे पढ़े आप? टीम बी।
2: ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ,
0: वाह।
2: ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ,
0: जाओ, वाह।
2: यूं तो मख्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, यूं तो मख्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ,
0: पुकारे जाओ, वाह।
3: वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहाँ अब नहीं जाने वाला। वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहाँ अब नहीं जाने वाला, कि अक्सर बुलाया बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया उठाकर निकाला।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है टीम बी।
3: उल्टी हो गई सब तदबीरें,
0: हाँ।
3: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया,
0: हाँ।
3: उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया।
1: अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है,
0: हाँ।
1: अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है,
0: जाता क्या है।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, तू मेरा कुछ नहीं लगता मगर इतना तो बता, देख के मुझको तेरे जहन में आता क्या है,
0: आता क्या है। टीम बी के लिए। आता क्या है ये
2: तुमने जो महकते हुए कुछ शेर कहे हैं, ये तुमने जो महकते हुए कुछ शेर कहे हैं, फिर कूचे जाना से कोई गम मिला क्या, जब हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, जब हाथ में न शीशा था न सागर था न मीना, अगर दिल नहीं टूटा तो फिर छन से गिरा क्या।
0: वाह वाह वाह वाह वा, क्या बात है भाई।
3: अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे।
0: वाह वाह वाह वाह, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। या टीम बी के लिए।
3: ये कयाम कैसा हैरा हमें, ये कयाम कैसा हैरा हमें, तेरे ज़ौके इश्क को क्या हुआ, ये कयाम कैसा हैरा हमें, तेरे ज़ौके इश्क को क्या हुआ, अभी चार कांटे चुभे नहीं तेरे

0: इरादे बदल गए,
1: वाह, ये पीने के
0: ये
1: लिए।
0: आशिकी है कैसी, ऐसे जियोगे कब तक,
1: ये आशिकी
0: ये
1: कैसी,
0: आशिकी है कैसी, ऐसे जियोगे कब तक, तरके वफा करो हो मरने के मीर डर से।
1: वाह वाह वाह,
0: ये
1: डर
0: तो
1: से ये।
0: यकीनन दिल का आंखों से कोई मजबूत रिश्ता है,
1: हाँ
0: यकीनन दिल का आंखों से कोई मजबूत रिश्ता है, कि दिल को चोट लगती है तो आंसू आ ही जाते
1: आ
0: हैं।
1: ही जाते हैं नून।
2: न हलावते न वो लज्जते न वो जायका न वो चाशनी,
1: बहुत अंदाज अच्छा है
2: न
1: माशाल्लाह।
2: हलावते न वो लज्जते न वो जायका न वो चाशनी, तेरे लाल तर के मुकाबले रहे कद्र लाल यमन गलत।
1: गलत तो वाह,
2: तबीब यूं कोशिश न कर
1: आहा
2: तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, तबीब यूं कोशिश न कर तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, तू इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे मर्ज की।
1: मर्ज की, ये टीमे के लिए ये।
2: यहां भी तू वहां भी तू, जमी तेरी फलक तेरा, कहीं मैंने पता पाया न हरगिज आज तक तेरा।
1: तेरा टीम बी के लिए अलिफ।
2: इधर आओ तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें,
1: वाह,
2: इधर आओ तुम्हारी जुल्फ हम आरास्ता कर दें, जो गैसु हम सवारेंगे कभी बरहम नहीं होंगे।
1: होंगे टीम ए के लिए ये।
0: ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे,
1: बहुत खूब,
0: ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू सवारे, मेरे हाथ से सवरते तो कुछ और बात होती।
1: कुछ और बात होती टीम बी के लिए
0: ये
1: ये।
0: हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती।
1: होती
0: ये फसाने मोहब्बत पर जुबाने दीगरा क्या,
1: वाह,
0: ये फसाने मोहब्बत पर जुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती।
1: कुछ और बात होती। कुछ और बात पे क्या आप लोगों ने जबरदस्त टक्कर दी है। कुछ और बात होती ये टीम बी के लिए।
0: यूं तो रहती है तसव्वुर में तुम्हारी सूरत, यूं तो रहती है तसव्वुर में तुम्हारी सूरत, फिर भी मिल जाओ तो तस्कीन सी हो जाती है।
1: हो जाती है ये टीम ए के लिए।
0: ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, ये कह सकते हो हम दिल में नहीं है पर ये बतलाओ, कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आंखों से नेहा क्यों हो।
1: निहा क्यों हो। वाह वाह वाह,
0: वफा कैसी कहाँ का इश्क, वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ ना ठहरा तो फिर ए संगे दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो।
1: हो टीमे के लिए।
0: वो मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने,
1: बहुत खूब, अंदाज
0: वो
1: अच्छा है।
0: मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने, जो दूर खड़े थे साहिल पर मझधार की बातें करते हैं।
1: मझधार की बातें करते हैं टीम बी के लिए नून।
0: नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और,
1: कोई दिन और ए के लिए।
0: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
1: फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
0: एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जा मुझको रुलाने के लिए आ।
1: टीमे के लिए आ।
0: अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम भी बुझाने के लिए आ।
1: वाह, क्या टक्कर हो रहा है इस वक्त भाई। बॉल आपकी पाले में टीम बी के लिए अलिफ।
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो
1: तो
0: मैं
1: मैं तुम्हारा,
0: तुम्हारा,
1: क्या शेर है।
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा।
1: मैं तुम्हारा टीम ए के लिए अलिफ। ये अमीर आमिर का शायद शेर है।
2: अश्के अपना के तुम्हारा नहीं देखा
1: क्या शेर
2: जाता,
1: है भाई, बहुत खूब।
2: अश्के अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता,
1: वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता।
2: उससे मत नजरे मिला, चढ़ता हुआ सूरज है वो, छीन कर आंखों से तेरी रोशनी ले जाएगा।
1: वाह वाह वाह वाह, ले जाएगा अलिफ टीमे के लिए।
0: अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन,
1: हाँ?
0: अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन, किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल।

0: से मिलता है।
1: किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये टीम बी के लिए।
2: ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, हम भी जवाब रखते हैं तेरे सवाल का।
1: सवाल का अलिफ टीम ए के लिए।
0: ए मौजी बला, उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं
2: न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से,
1: वाह, न जाने
2: न
1: कितने दिल
2: जाने
1: बन जाएंगे।
2: कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आयना हम आयना खाना बना देंगे।
1: बहुत खूब, बना देंगे टीम ए के लिए ये।
0: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम,
1: वाह,
0: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम, जब उड़ाती है हवाएं तुंद खाके कुए दोस्त।
1: कोई दोस्त ते टीम बी के लिए।
0: तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया,
1: हाँ,
0: तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया। इतरा रहे हो आज पहन कर नई कुबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है।
1: कल की बात है ये टीम बी के लिए। अमीरी जब से आई है तो लहजा उसका बदला है, बड़ा ही तुरश लहजा है, वो लहजा मार देता है ये।
0: ये वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, ये वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, करूं तो कैसे करूं अलग तुझे जिंदगी की किताब से।
1: किताब से ये।
3: ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है।
1: खिलाफ है ये टीम बी के लिए।
2: ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यार अब तेरी महफिल में,
1: हाँ,
2: ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यार अब तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी।
1: ज़बां मेरी ये।
0: ये मेरी जबा ये गजल नहीं,
1: हाँ
0: ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ।
1: हाँ
0: ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, कि किसी के अहदे शबाब पर मिटी कैसी कैसी जवानियाँ। कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारते, कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारते, कभी दिल की नाव डुबो गई मेरे आंसुओं की रवानियाँ।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा शेर है, आंसुओं की रवानियां। नून।
0: नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो,
1: हाँ,
0: नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू जुबा आते
1: के
0: आते।
1: आती है उर्दू जुबा आते आते ये टीमें के लिए।
3: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने,
1: उम्दा शेर है।
3: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई।
1: पाई ये टीम बी के लिए।
0: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब,
1: बहुत
0: ये
1: खूब,
0: मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद ख्वार होता। अहले हवस क्या साथ निभाते, सख्त कठिन थी मंजिल मंजिल, इश्क तो आखिर इश्क ही ठहरा, राहें ढूंढी मुश्किल मुश्किल, जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जैसे नैया डगमग डगमग, जैसे दीपक झिलमिल झिलमिल।
1: झिलमिल झिलमिल लाम, वाह। और हम आपको बता दें, इस पहले राउंड के दो शेर आप लोग और पढ़ेंगे, एक आप, फिर आप, उसके बाद हम राउंड टू शुरू करेंगे। जी।
2: लगानी पड़ती है डुबकियां उभरने से पहले,
1: वाह,
2: लगानी पड़ती है
1: डुबकियां।
2: डुबकियां उभरने से पहले, ग्रुप का मतलब जवाल थोड़ी है।
1: ग्रुप का मतलब जवाल थोड़ी है।
3: ये मुकद्दरों की लिखावटे जो चमक गई वो पढ़ी गई, ये मुकद्दरों की लिखावटे जो चमक गई वो पढ़ी गई, जो मेरे कलम से लिखा गया उसे क्यों किसी ने पढ़ा नहीं।
1: पढ़ा नहीं, बहुत खूब। और आखिरी शेर टीम भी पढ़ेंगे इस राउंड में।
2: निगाह की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है।
1: निगाह की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है।
2: निगाह की बर्छियां जो सह सके, सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है।
1: वाह वाह वाह, हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है। अभी हम लोग और जीते हैं और राउंड टू तक चलते हैं भाई। और पहला राउंड जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, बहुत ही खूब आप दोनों ने परफॉर्म किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि टीम ए ने अच्छा पढ़ा और टीम बी ने अच्छा पढ़ा, आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। राउंड टू के लिए आप लोग तैयार है? ये राउंड है लफ्जी राउंड। इसमें हम हर टीम को पांच पांच वर्ड देंगे और उसको उससे एक शेर कहना है, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? शुरू करें। टीम ए के लिए पहला वर्ड है, पहला लफ्ज है

0: बीमार।
1: मैं मरीजे मोहब्बत हूँ, मुझे देखने आना।
0: अरे वाह,
1: मैं मरीजे मोहब्बत हूँ, मुझे देखने आना। परहेज नहीं करना बीमार समझकर।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या आप क्या कह रहे थे कि फल फ्रूट भी साथ में लेके आना, वही हम देख रहे थे आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा। टीम बी के लिए है लफ्ज दरिया।
1: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने।
1: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
0: वाह, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टीम ए के लिए एक बार फिर से, और इनके लिए जो लफ्ज है वो है रंजिश।
1: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ।
0: हाँ,
1: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
0: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। टीम बी के लिए है लफ्ज परचम।
1: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन।
0: बहुत खूब।
1: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन। तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
0: वाह वाह वाह वाह, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, मजाज लखनवी। टीम ए के लिए एक बार फिर से, लफ्ज है सितमगर।
1: इधर आ सितमगर हुनर आजमाए।
0: इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए।
1: इधर आ सितमगर हुनर आजमाए। तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
0: वाह वाह वाह, आप लोगों के लिए है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत ही खूब। टीम बी के लिए लफ्ज है गजल।
1: अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूँ।
0: बहुत खूब।
1: अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूँ। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ।
0: बहुत ही खूब, तुझे आईने में उतार लूं। टीम ए के लिए लफ्ज है लब।
1: नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। नाजुकी
0: उसके
1: उसके
0: लब
1: लब
0: की
1: की
0: क्या
1: क्या
0: कहिए।
1: कहिए। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है।
0: हाँ, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत ही खूब। टीम बी इश्क।
1: ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब। टीम ए के लिए लफ्ज है गुल।
1: ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते।
0: हाँ,
1: ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते।
0: बेताब गुफ्तगू करते। और इस राउंड का आखिरी लफ्ज है टीम बी के लिए चमन।
1: ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं। तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती।
0: कुछ और बात होती। बहुत ही अच्छा शेर है माशाल्लाह, और राउंड टू भी मुकम्मल हो गया है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने इसमें भी परफॉर्म किया है। आखिरी राउंड के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये जो हमारा राउंड है इसको मिसरा राउंड बोलेंगे। हम किसी एक मशहूर शेर का कोई भी मिसराए उला या सानिया देंगे, आपको दूसरा मिसरा लगा के शेर कंप्लीट करना है, कोई भी शेर हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए रेडी है ना।
1: जी सर।
0: टीम ए के लिए पहला मिसरा है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।
1: बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बादी गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं अंजामे गुलिस्ता क्या
0: क्या
1: होगा।
0: होगा, बहुत ही खूब। टीम बी के लिए तो बहुत ही आसान मिसरा आया हुआ है, ये पढ़ भी चुकी हैं अब, लेकिन मिसरा है तो है। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
1: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
0: बहुत ही खूब शेर है, और टीम ए के लिए है बहुत ही आसान मिसरा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
1: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
0: हाँ,
1: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी
0: फिर
1: कम
0: भी
1: निकले।
0: कम निकले। टीम बी आपके लिए एक शेर है कि मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
1: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती।
0: वाह,
1: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।
0: बहुत ही खूब जी। टीम ए के लिए है अगला और बल्कि आखिरी, कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर।
2: नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद।

0: पर तुषाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। तुषाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और इस राउंड का आखिरी मिसरा है टीम बी के लिए कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
2: गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले।
1: जी
2: गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
1: चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। गुलशन का कारोबार चल रहा है और बैतबाजी का भी कारोबार चल रहा है। हमारे सामईन बहुत महजूज हो रहे हैं और हमारी इस बैतबाजी का ये आखिरी राउंड भी मुकम्मल हो गया है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सामईन, ये थी हमारी बैतबाजी जिसमें शिरकत करने वाली टीमों का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से था। टीम ए में थे जनाब इम्तियाज अली साहब और मोहतरमा कहकशा खातून साहिबा, और टीम बी में थी मोहतरमा दरख्शा खातून साहिबा और जनाब यूसुफ आरिफ साहब। प्रोग्राम की पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com kklsurdu@gmail.com। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7991778157 7991778157। याद रहे इस नंबर पर सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आप अपने पैगाम हमें इरसाल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेजबान शम्सुल आरफीन को दें इजाजत। आदाब।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए
6: 0542227658।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें
7: 0542227658।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं श्याम सुंदरपाल। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए खेमटा गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत और आज के कलाकार हैं श्याम सुंदर पाल। इनके स्वर में अब लीजिए सुनिए झूमर गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के कलाकार थे श्याम सुंदर पाल। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से, आवाज उदित नारायण और साथियों की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक्शन रिप्ले से, आवाज श्रेया घोषाल की। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म आपके खातिर से लीजिए सुनिए ये गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अब लीजिए सुनिए बादशाह फिल्म से ये गीत। आवाज़ अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म बाजीगर से ये गीत। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए बेवफा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में अब लीजिए सुनिए फिल्म चमत्कार से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वीर जारा सी के गीत। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है जावेद अख्तर ने।

अब लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म पापा कहते से ये गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म एक लड़का एक लड़की से ये गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलो हर्ट्स और वेव्स ODT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जो आधारित है आपके भेजे हुए यानी श्रोताओं के भेजे हुए ईमेल संदेशों पर। जी हाँ, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस ये प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

श्रोताओं, इस वक्त अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आपकी ढेर सारी फरमाइशें ईमेल संदेशों के माध्यम से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम अभी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए यहाँ स्टूडियो में बैठी है आपकी रेडियो दोस्त अंजु तिवारी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और हम तैयार हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइशी पूरी करने को। दोस्तों, आपको यहाँ की जो ईमेल आईडी है उसका तो पता होगा ही होगा, लेकिन हमारे जो नए श्रोता इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हमारी ईमेल आईडी है airvnsfgehp@gmail.com। एक बार फिर सुन ले, airvnsfgehp@gmail.com। इस मेल आईडी पे आपको मेल भेजना है, लेकिन लेकिन एक बात और कि आपके अभी भेजे हुए ईमेल संदेशों को हम कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। ईमेल के कार्यक्रम में हम पहले से आए हुए संदेशों को ही लेते हैं, इसलिए आप अगले प्रोग्राम के लिए जरूर अपने संदेश बचा के रखिएगा और भेजिएगा जरूर। तो आज का प्रोग्राम आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त आकाशवाणी मना रही है अपने 90 वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन, और ऐसे में बहुत सारे कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे होंगे अलग अलग केंद्रों से। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे आकाशवाणी से इतने सारे श्रोताओं का जुड़ना हुआ। बहुत सारे श्रोता बहुत जमाने से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और अब धीरे धीरे और भी नए श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आप हैं तो आकाशवाणी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, अपनी आकाशवाणी आपके साथ है और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोताओं का साथ यूं ही बना रहे और फिलहाल तो पूरी करते हैं आपकी फरमाइश इस प्रोग्राम में जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और श्रोताओं के बहुत सारे संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जिनको बिना देर किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो गाना प्रोग्राम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये है प्रतिज्ञा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके लिए हमारे पास ढेर सारी फरमाइशें आई हैं। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर और कनीज सकीना हसीना दिलशाद। अगला जो संदेश है ये हमारे पास आया है मुक्कम फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से, जाकिर मुलाली, सुमैया मुलाणी, सुबान समीर, सलमा मुलाली, मुमताज़ दिलशाद और नसीर मुलाणी, इनके चाचा चाची के साथ ही परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं वो भी शामिल हैं। ये संदेश हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, झज्जर हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरा मनशेंडे, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन।

ग्राम बाघामोड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से हैं गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी। गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी, मेहराज जहां, इन्होंने संदेश भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसे हमने लिया है फिल्म प्रतिज्ञा से। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

ये तो प्रतिज्ञा फिल्म से ये गीत था जिसे अभी आपने सुना, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म काला बाजार से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। अगला संदेश हमें भेजा है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। संबलपुर कांकेर से हमारे श्रोता हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। कुड़ी सेक्टर 5 सूरी नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। दिलदारनगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। मलियान सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और इनके परिवार के सभी सदस्य। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। श्राफ रोड राजकोट से हैं प्रीमा रानी जाटव, डॉली और सुरेश। गुजरात से हैं प्रवीण राज सोनी और श्वेता सोनी। चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली। कुंभारगली कोलगांव से हमारे श्रोता हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार। लेवई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।

नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन।

राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसके लिए हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश आई थी। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है फिल्म काला बाजार से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन। और ये गीत जा रहा है आपके रेडियो सेट पर।

आंखों में कैसे नींद आएगी। जी हाँ दोस्तों, गर्मी इतनी पड़ रही है कि जब तक आप कुछ ठंडी हवा का इंतजाम ना कर लें, नींद सच में आंखों से गायब रहती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा थके हों, तब तो भाई गर्मी हो सर्दी हो, इतनी तेज़ नींद आती है ना कि सच पूछिए तो वो ही असली नींद होती है जो हमें सुबह एकदम तरोताज़ा यानी फ्रेश कर देती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन भर हम अपने आप को काम में ऐसे लगाए रहें, यानी दिमागी तौर से शारीरिक रूप से हम व्यस्त रहेंगे तो अपने आप रात में थकान से हमें नींद आएगी। और एक और तरीका है अच्छी नींद आने का कि आप रेडियो ऑन करिए, धीमी आवाज़ में गाने सुनते रहिए और सुनते सुनते कब आपको नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि हम रेडियो चलाएं। और सच पूछे रेडियो से हर तरीके के गाने सुनने को मिलते हैं, चाहे नए हों पुराने हों, गीत हों गज़ल हों या लोकगीत हों, जिसमें भी आपकी रुचि हो वो चलाइए और आराम से आँख बंद करके बिस्तर पे लेट जाइए। फिलहाल तो बिस्तर पे लेटने का समय नहीं है, लेकिन अपने काम के साथ साथ आप इस प्रोग्राम में शामिल अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं, अपनी फरमाइशें गीत सुन सकते हैं। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म गीत से। फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से हैं एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। अगला संदेश है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर और सोपान तायडे। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर। अहमदनगर बजरडीहा से हैं बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद, मलु अंसारी और अहमदनगर बजरडीहा से इन्होंने संदेश भेजा है हमें। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित। कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान।

अगले हमारे श्रोता हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, रसीद वारसी और यशफ अब्बासी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा।

संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष।

पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुतासु अर्णवानंद और सत्यवानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहिन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। और अब पूरी किए देते हैं आपकी ये फरमाइश। तो ये गीत जो जा रहा है आपके रेडियो सेट पर, उसे हमने लिया है गीत फिल्म से, आवाज मोहम्मद महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, इस वक्त अपना रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कार्यक्रम को, जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज का ये कार्यक्रम आधारित है हमारे श्रोताओं के, यानी आपके भेजे हुए ईमेल संदेशों पर। और आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए स्टूडियो में तैयार बैठी है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, और ये है विरासत फिल्म के लिए। ये फरमाइश हमारे पास आई है और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने फरमाइश भेजी है, सिद्धार्थ नगर, दरियापुर, बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, दथरिंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा,

बेवरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, की सुतासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, प्रहलाद और उमेश वर्मा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और इनके परिवार के सदस्य।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधा रामटेके और श्रव्या रामटेके। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग नाम से मैसेज हमारे पास आते हैं, यानी ईमेल संदेश आते हैं, और जब हम ओपन करते हैं तो वही नाम रिपीट होते हैं। ऐसे में कई बार कुछ श्रोताओं के नाम रिपीट हो जाते हैं, जिसका हमें खेद है। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम जी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नवन ढींगिया और अपार ढींगिया। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। ग्राम पोस्ट रजईपुर उगापुर भदोही से हैं बबलू यादव, सुनील यादव और रोहित यादव। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम सुरलकर। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। वाडी खामगांव से हैं अनंता वाढे, रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी, खुशी और वाढे परिवार के सभी सदस्य। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और अब आपको सुनवाते हैं विरासत फिल्म का ये गीत।

विरासत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और अब अगले गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे सी। और इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल। अगली फरमाइश है मजनू का टीला से कमल बालूजा और इनके परिवार के सदस्यों की तरफ से। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब और अफजल ताज। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा और इनके परिवार के सदस्य। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ही संतोष खटसे और विनोद खटसे। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा। धनोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। और अब आपको सुनवाते हैं फरमाइश का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म नींद तुम्हारी ख्वाब हमारी सी। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन में पिरोया है मदन मोहन ने।

दोस्तों, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है और हमें उसके साथ अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। ये देखना होता है कि हाँ, हमारा कार्यक्रम भी हो जाए और समय भी आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हम निकाल ही लेते हैं। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आ गया है जो अब जा रहा है आपके रेडियो सेट पर, और जिसे हमने लिया है फिल्म मेरा नाम जोकर से। मुकेश की आवाज़ है, इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का। और जिन श्रोताओं ने इसके लिए हमें फरमाइश भेजी है, ये हैं राजपुर कोरौता मंगारी बाजार वाराणसी से चंगा सिंह, अमित सिंह, सपना सिंह, यर्षिका सिंह और राजवीर सिंह के साथ ही इनके परिवार के बाकी के सदस्य, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा, चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य।

इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमजाड़े और स्वराज जमदाड़े, और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा बोखड़े और हनुमान बोखड़े से। और अब इसके साथ ही इजाजत दीजिए प्रोग्राम समाप्त करने की। अपने रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को नमस्कार।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे थे श्रोताओं के संदेशों पर आधारित, ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है।
2: जी
1: तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती

0: आती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे

0: लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
4: सर।
5: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।

0: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
1: अच्छा।
0: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
2: जैसे?
0: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
2: वैदिक समूह?
0: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
2: भरत?
3: भरत नाम तो हमने सुना है।
0: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
2: ओ, भरत। अच्छा तो ये बात है।
0: हाँ।
2: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
2: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
0: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू,
0: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
3: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ।
3: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
3: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
2: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा।
3: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर,
2: इंडिया और हिंदुस्तान भी।

0: हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
0: ओ,
1: हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ।
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।

0: वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
1: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
2: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
1: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
2: हाँ पूछो बेटा।
1: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
2: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं। लेकिन माँ, ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
1: जी
2: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
2: ला।
0: कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे, अरे मिल गया मुझे,
2: क्या मिल
1: मिल
2: गया,
1: गया मुझे,
2: क्या
1: माँ,
2: मिल गया,
1: माँ,
2: क्या मिल गया,
1: मुझे मिल गया,
0: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
2: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा,
1: माँ
2: बताओ तो सही, क्या हो गया है?
1: माँ, मुझे उड़ने का तरीका मिल गया, हाँ, उड़ने का तरीका मिल गया,
0: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
1: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो, हाँ
2: धुआं?
1: इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है,
2: क्या
1: बताओ
2: उड़ रहा है,
1: बताओ
2: क्या उड़
1: उसमें
2: रहा
1: क्या
2: है?
1: उड़ रहा है?
2: कुछ भी
1: हाँ
2: तो नहीं,
0: कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
2: राख?
1: हाँ हाँ उड़ रही है ना,
0: हाँ वो तो है, मगर
1: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं? मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते
1: ठीक
0: हैं,
1: है, आओ
0: चलो
1: मेरे
0: चलो।
1: साथ, आओ
2: अरे सुनो,
1: हम देखते हैं, आओ
2: अरे
1: देखते
2: खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो। ओफ,
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई
5: भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: हाँ आओ, यही ठीक रहेगा, आओ चलो।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब हट जाइए,
5: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
5: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में, हाँ
4: अरे अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
5: हाँ? क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो,
5: हाँ?
4: स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर।
7: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी, अब नए अंदाज में FM 100.6 पर।

0: सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें।
1: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब, आ जाइए।
3: अरे आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे, वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
3: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ,
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
3: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
3: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर ले रहा है। अरे
2: मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
4: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
2: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार, ये तो कमाल हो गया।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
4: अरे जबरदस्त, अरे एक दो लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
2: वो देखो, वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
4: अरे हां, अरे वो पेड़ों की तरफ, अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
5: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद, यानी नवंबर सन 1783 में, जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग,
8: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
10: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
11: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे

0: आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार है मनोहर सिंह। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में तुलसीदास रचित ये भजन।

मनोहर सिंह के स्वर में अभी आपने सुना तुलसीदास रचित ये भजन, और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में कबीर दास की रचना।

अभी आप सुन रही थी सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे मनोहर सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ही आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतीचि सहस्रबुद्धि का गायन। राग है मुल्तानी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत की है तपन बैनर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रतीचि सहस्रबुद्धे का गायन, राग था मुल्तानी। तबले पर आपके साथ संगत की थी तपन बैनर्जी ने। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। कार्यालय पुलिस आयुक्त जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी काजल देवी श्रीवास्तव दिनांक 21 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 26 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल है और कदकाठी सामान्य है। आखिरी बार इन्हें हल्के नीले रंग की साड़ी में देखा गया था।

वाराणसी से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम सोनबरसा थाना चौबेपुर वाराणसी निवासी सीताराम राजभर ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री हिरन राजभर दिनांक 22 मार्च 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 25 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला।

कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल और दोहरा बदन है। आखिरी बार इन्हें काले रंग के सलवार कुर्ते में देखा गया था। वाराणसी से ही प्राप्त अगली सूचना के अनुसार ग्राम रतनपुर पोस्ट बड़ा गांव थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी निवासी संतोष पटेल ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री वंदना पटेल दिनांक 10 मार्च 2026 से लापता है। इनकी उम्र है लगभग 19 वर्ष, कद 4 फुट 2 इंच, इकहरा बदन, रंग गेहुआ है। आखिरी बार इन्हें पीले रंग के सूट में देखा गया था। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुई। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम सुनिएगा दिल्ली केंद्र से शाम 4 बजे। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। रात 8:10 पर हम आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला स्वास्थ्य सेवा की चौथी कड़ी। आबिदा परवीन के गाए सूफी गीत आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे। संस्कृत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और श्याम सुंदर पाल के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे डॉक्टर अनुराधा कुमारी और सतीश कुमार की बातचीत। बातचीत का विषय होगा मुर्गियों में कृत्रिम ऊष्मायन और चूजों की हैचिंग। श्याम सुंदर पाल के गाए लोकगीत आप लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:15 पर, जिसके मुख्य आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में सुनेगा संजीव मंडल के गाए बांग्ला गीत। दिन में 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण बहनी चर्चा और गीत संगीत के अलावा सुनेंगी डॉक्टर सरिता सिंह और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा दिन में 2:30 पर, आज की प्रस्तुति होगी सना सलीम की। और अंजुमन कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। इसके अलावा फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:10 पर। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।

0: चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगान ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमीरेट्स, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराए रास्त शामिल हुए हैं। दरअसल रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत तहफ्फुज़ और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
1: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशन के लिए नहीं हो सकता और इसीलिए स्थान को चुना गया।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वजीर आला ने वाज़ह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा ना होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनज़िली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
2: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगनैया।

0: नमस्ते लाली दीदी, और साथे साथे देखा अपन कार्यक्रम सुनने वाले भी कुल बहन लोगन के हमारे नमस्ते।
1: और बतावा हाल चाल, घर परिवार कुल नीमन से हो ना?
0: एकदम दीदी, हाल चाल भी ठीक हो, और घर परिवार में भी देखा सब लोगन बहुत अच्छे से हवन। बाकी देखा गर्मी जो पड़ा तो ऐसे तो थोड़ा सा हालत खराब भइला हो सबकर।
1: गर्मी पड़ा तो लेकिन तोरे जो आंगनवा में आ साथे दुआरी पर दू दू जगह तुम जो नीमी के पेड़ लगौले हो ना, तो वहां अगर तनी बैठ जाए मनई तो लगेला कि गर्मी कुल भुलाए गई। आ ऐसे भी हो गांव में डहरी पे चला अगर, तो डहरी के आरी आरी जब पेड़ पौधा लगल रहेला ना, तो वहां उतना गर्मी का पता नहीं चलेला।
0: नहीं दीदी।
1: लेकिन जहाँ रोड बनल हो दहकेला बुझाएला ना कि ऊपर से दऊ लहकत हो ना नीचे से सड़।
0: एकदम सही कहा तू दीदी। देखा जब पेड़ पौधा न रही तो छाँ कैसे मिली, तो उसे घाम का असर बहुत ज्यादा हो जाला। और देखा जब अभी हम आपसे या बहनी लोगों से मिले बदे आवत रही ना रास्ते में, तो अपन कुछ बहनी लोगन भी हमने साथे में चलत रहलिन, तो उ सोचत रहलिन कि कहीं कोनो पेड़ दिख जाए तो वहां पे कुछ देरी छहा ली। लेकिन देखा रास्ते में कहीं पे भी कोनो पेड़ नहीं दिखला, और दिखी भी कहाँ से दीदी, जब मनई अपने सुख सुविधा के चक्कर में सब पेड़ काटत चल जाई तो कहाँ से पेड़ दिखी कोनो।
1: अरे सबके तो अपन बिल्डिंग ताने के हो कि हमार घर ऊंच रहे, हमार इतना कमरा इतना घर का बंगला जैसन बनवा ली है लोगन, लेकिन ई न सोची है कि भाई चारों ओरी सिरमिट बालू कंक्रीट का मकान रही अगर, अब पेड़ पौधा न रही तो ओसे उनकर जिंदगी नहीं चली। भाई
0: एकदम
1: जिंदगी
0: दीदी।
1: बचावे बदे, जिंदगी के चलावे बदे, दोनों चीज बदे अपने पेड़ पौधन का जरूरत पड़ेला।
0: एकदम दीदी, जब धरती पे देखा पेड़ पौधा न रही तो अपन जो मनुष्य हन उनके और जीव जंतु हन उन लोगन के ऑक्सीजन कहाँ से मिली, और जब ऑक्सीजन न मिली तो लोग जीवित कैसे रहियन। और देखा जो वन्य जीव लोगन हन पशु पक्षी हन उनकर तो बसेरा भी पेड़ पौधा पे ही होला,
1: ई बात
0: जंगल में
1: सही
0: होला।
1: कहलू, बिल्कुल सही कहलू है लाजो। आ जानत हो ई कुल जीव जंतु जौन होलन पशु पक्षी होलन, ई कुल पेड़ पौधा हुवन, ई कुल अपने प्रकृति के जौन अंग हुवन ना, सब एक दूसरे के साथे मिल के पर्यावरण के संतुलित रखेलन। और
0: हाँ
1: जब
0: एकदम दीदी,
1: पर्यावरण में संतुलन बनल रहेला ना, तो हर तरह का मौसम अपने समय से आवेला, समय
0: एकदम।
1: से बरखा बुन्नी हुई, समय से घाम हुई। अब देखा ना लोग कहत हुवन के इतना जोर का घाम दऊ करत हुवन, ऐसा का गर्मी का बो नहीं पड़
0: एकदम
1: रहे,
0: दीदी,
1: लेकिन ओकरे बदे के जिम्मेदार हो, हम ही
0: मनई
1: तो
0: खुद हन।
1: जिम्मेदार है भाई। हमन इतना घोरा घोरा चेताई ला कि देखा हो जितना मनई रहे उन पर पेड़ पौधा भी वही मात्रा में दुगना होए के चाहिए, लेकिन अगर
0: एकदम
1: केहू न सुनी तो वही तो कुछो नहीं, आवे वाला समय बहुत खराब हो जाए।
0: एकदम दीदी, यही से देखा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पेड़ के कटाई के भी तो पाबंदी लगावल जरूरी हो, लेकिन एकरे साथे साथे देखा अधिक से अधिक नया नया पेड़ पौधा लगाएं, और लगा के ओके ऐसे छोड़ ना देवे के, ओकर अच्छे से देखभाल भी करे के हो कि आगे भविष्य में अच्छा पेड़ बड़ा सा पेड़ बन सके।
1: अतनी दिन सेवा करबू ना तो करे बात, तब फिर खुदे हुआ अपन सोर नीचे ले खींच ले तो
0: हाँ
1: अपन पानी लेत रही है जिंदा हो जाए।
0: एकदम
1: हाँ
0: दीदी,
1: तो ए तरह से करे के चाहिए भाई, बरखा बुन्नी आवे से पहले अगर दिमाग में बना ली है भैया बहनी लोगन, तो ई जरूर करिए। चाहे वो पेड़ पालू हो, चाहे जीव जंतु हो, पशु हो, चिड़िया चुगुन हो, केहू भी है, एकरे साथे साथे नदी कुइया पोखरा तालाब जे भी चीज है, ई सब कुछ प्रकृति का अपने अंग है, और सबके
0: एकदम।
1: संरक्षित कई सुरक्षित कई अपने जिम्मेदारी है। देखा काल हुए विश्व पर्यावरण दिवस हा,
0: एकदम दीदी,
1: तो
0: हाँ
1: ई दिवस मनावल जाई, और ई चेतावे का ही दिन होला कि सब केहू चेते कि ए तरह का जौन मौसम होता है, ए तरह का जौन धरती पर एके आपदा कहल जाई, जौन हम लोगन पर्यावरण के संकट से
0: हाँ
1: जूझत है। हाँ
0: एकदम
1: तरह
0: दीदी,
1: तरह का बीमारी होता, परेशानी होता, ये कुल यही से होता कि अपने पर्यावरण में इतना असंतुलन है। लेकिन देखा
0: एकदम।
1: तू तब बहुत जानकारी लेके आलू, बहुत चेतावत हो, बहुत गुनी हो गईलू भाई, तो ये गुनी के संगे संगे कुछो और चेतावे का बात बहनी
0: एकदम
1: लोगन के
0: दीदी,
1: हो।
0: देखा चेतावे के तहबो, देखा प्रकृति का बात करत है तो देखा प्रकृति हम लोगन के बहुत कुछ देले हो, पेड़ पौधा के साथे साथे पानी हो, अन्न हो, फल हो, साग सब्जी सब। लेकिन देखा हम ये कहे चाहते हैं कि जो भी प्रकृति की तरफ से हम लोगन के मिलल हो उस सब चीज का आदर और सम्मान करे के चाहिए। जैसे देखा दीदी, आजकल लोग अपने घरे में खाना बनावत हैं, आधा खात हैं ना और आधा फेंक देवत हैं जो भी बचत हो, तो ऐसा न करे के चाहिए। अन्न का अपना अपमान कभी भी न करे, के चाही, ये बहुत बड़ा पाप मानल जाला। और कहन जाला कि जे अन्न का आदर सम्मान करला ओकरे हाथे में माई अन्नपूर्णा का वास होला, ओकरे घरे में कभी भी अन्न का कमी नहीं होत।
1: बिल्कुल सही बात कहत हो लाजो, चेतावे वाली बात है। देखा शादी बियाह पड़े ला ना तो अपने मूर्धन्य काका के ना जाना तो ऊ जई है तो अपन पेट छोड़ के खाई है माने।

0: थरिया में इतना खाना ले ली है, खा जाइए खा जाइए, कहिए हम तो भैया अन्न का अपमान नहीं करी ला, छोड़ी ला नहीं कुछो, लेकिन इहो नहीं करे के कि इतना ले ला कि तोहर पेट जो ना छोड़ दे, तोहर साथ डॉक्टरी दौड़े के पड़ी।
1: एकदम दीदी। और देखा आपके अगर भर पेट खाना मिल पावत हो तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, कहाँ से कि देखा अपने आसपास में कुछ ऐसन लोगन भी हैं जिनके भर पेट खाना नहीं मिल पावत, उनके खातिर एक वक्त का भी खाना बहुत मुश्किल से मिल पावला था। देखा कोशिश यही करें कि अगर आपके आसपास में ऐसन लोग हैं तो उनकर भी थोड़ा सा मदद कर देवें।
0: बिल्कुल करे के चाहिए हो। देखा तू इतना नीक नीक बात बतियावा तो कि मन कहता कि बतियावा जाए, लेकिन देखा सनेश भी से भी
1: हाँ
0: बहुत
1: दीदी
0: जानकारी मिले ले,
1: एकदम
0: तो ई
1: दीदी
0: सनेश सुन लिहल जाए फिर बत कही कैल जाए।
1: सुनवाई दा।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ, नंबर नोट करो
6: 0542227658।
4: ओ
7: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: देखा दीदी सनेश तो हो गए, सनेश से भी कुछ जानकारी का बात सुनने के मिला ला। और साथे में देखा अभी हम लोगन अपने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत करत रही, तो देखा यही में एक के नीचे का बतकही लेके आल है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का क्या योगदान हो, ये विषय पे डॉक्टर सरिता सिंह से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया बतियाले हैं। तो बहनी लोगन नीचे का बतकही सुने।
8: प्रोफेसर डॉक्टर सरिता सिंह, आप अध्यक्ष हैं समाज शास्त्र विभाग श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि ये जो पर्यावरण के बात होले अपने प्रकृति में समाज में
9: जी।
8: तो ये पर्यावरण का हो और महिला लोगन का योगदान मन रहल हो, ये विषय पर आज आपसे चर्चा हुई। तो पहले तो ये बतावे कि पर्यावरण का हो।
9: जी, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण की उपज है
8: जी।
9: मानव अपने चारों ओर कई प्राकृतिक शक्तियों एवं पदार्थों जैसे चांद, सूरज, तारे, पृथ्वी, हवा, नदी, पहाड़, जंगल, जलवायु तथा कई सामाजिक सांस्कृतिक तथ्यों जैसे समाज, समूह, संस्था, प्रथा, लोकाचार, नैतिकता, धर्म, सामाजिक मूल्यों आदि से घिरा हुआ है। इन सभी का सम्मिलित रूप पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे जल, वायु, भूमि, वन, जीव जंतु आदि की रक्षा करना और उन्हें किसी भी तरह की क्षति से बचाना होता है।
8: जिसन की संरक्षण का मतलब निकला ला कि उसे बचाना।
9: जी जी।
8: अब हम ये जानना चाहें कि का महिला लोग भी इमन योगदान कुछ कर ले हैं।
9: अच्छा, जहाँ तक महिलाओं का पर्यावरण संरक्षण में योगदान का प्रश्न है, तो महिलाएं प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं।
8: कैसे?
9: देखिए तो प्राचीन काल में वन कन्या शकुंतला का जो प्रकृति के साथ प्रेम था, उसको महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि शकुंतला की विदाई पर महर्षि कर्व सभी आश्रमवासी प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों, जो तुम लोगों को पहले जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी, श्रृंगार प्रिया होकर भी जो तुम्हारे कोमल किसलय को श्रृंगार हेतु नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे फूलों की उत्पत्ति के समय प्रसन्न होकर उत्सव मनाती थी, वह शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, तुम लोग उसे अपनी आज्ञा प्रदान करो।
8: तो ये बड़ी प्राचीन बात आप बता रहे हैं। तो उस समय से पर्यावरण संरक्षण के लोग ध्यान में रखते हैं।
9: जी जी
8: ये क्रम कैसे आगे बढ़ा?

0: आगे बताओ
1: जी,
0: जी।
1: दरअसल महिलाएं अपना अधिकतम समय प्रकृति के साथ बिताती हैं। व्रत व त्योहार के अवसर पर, प्रतिदिन के काम काज में, पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों का संरक्षण करती हैं।
0: जी
1: तुलसी, केला, आंवला, नीम, पीपल, वट का संरक्षण तो महिलाएं रीत रिवाज के तौर पर करती हैं।
0: अक्सर देखा मैं आंवला की जो अमावस्या वगैरह पड़ा तो महिला
1: जी
0: लोग जन हो रोजी नारा से जन पूजा
1: जी
0: पाठ
1: जी
0: करें
1: जी
0: और
1: जी
0: इसे भी नहले के बाद जन हो एक लोटिया जड़ चढ़ाव का बढ़िया परंपरा
1: जी
0: रहा
1: जी
0: हो।
1: जी
0: जी, तो नारी लोग का एमन ज्यादा योगदान हो।
1: जी जी
0: तो एकरे इतिहास के बारे में बताऊं, आप तो बहुत प्राचीन बात बतौनी
1: जी
0: कि हाँ शकुंतला के समय से जो है रहल हो पर्यावरण संरक्षण के बाद,
1: जी
0: और बाकी और नजदीक आवल जाए तो इतिहास के बाद
1: जी
0: बताना
1: जी
0: जी।
1: अगर पर्यावरण संरक्षण के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में नेतृत्व करके प्रकृति को बचाया है। विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, खनन विरोधी आंदोलन, नौदान्य आदि ऐसे आंदोलन हैं जिनमें महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सृष्टि में कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। अतीत से लेकर वर्तमान तक इस कथन को महिलाओं ने पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में साबित भी कर दिखाया है।
0: जी
1: अमृता देवी, गौरा देवी, बचनी देवी, सालू मारदा थिमक्का, राजकुमारी देवी, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, वंदना शिवा, सुनीता नारायण जैसी बहुत सी महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आदिवासी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदिवासी समुदाय का रहन-सहन विशेषकर जल, जंगल और जमीन से जुड़ा है, जिसे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में इस समुदाय की महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती आ रही हैं।
0: लगातार माने पर्यावरण संरक्षण के बात जो हो
1: जी
0: निरंतर क्रम में रहल हो
1: जी
0: जी।
1: जी
0: तो एक साथ साथ जो आंदोलन आप बतौनी है कि कुछ
1: जी
0: आंदोलन भी भले के
1: जी
0: बचाव बदे
1: जी
0: के,
1: जी
0: तो चिपको आंदोलन का आप चर्चा कहनी है,
1: जी
0: तो ये चिपको आंदोलन का हो का एक उद्देश्य रहल हो।
1: जी चिपको आंदोलन से पहले यहाँ विश्नोई आंदोलन की चर्चा करना समीचीन है। यह महिलाओं के त्याग और बलिदान का परिणाम है। 18वीं शताब्दी के आरंभ की एक सच्ची घटना है जो खेजरली गांव से प्रारंभ हुई। राजस्थान के जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर खेजरली गांव खेजरी किस्म के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के लोग बिश्नोई पंथ के अनुयायी थे। इनके लिए इन वृक्षों को काटना अनैतिक एवं धर्म विरुद्ध कृत्य था। तत्कालीन महाराजा अभय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने अपने आदमियों को खेजरली गांव में लकड़ी काटने हेतु भेजा, किंतु उन्हें खेजरली निवासी अमृता देवी ने पेड़ काटने नहीं दिया और वह पेड़ से चिपक गई। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई।
0: माने जैसा नाम हो कि हाँ पेड़ न कटे भले हमार शरीर कट
1: जी
0: जाए,
1: जी
0: है ना।
1: जी चिपको आंदोलन 1970 के दशक में काफी लोकप्रिय हुआ जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में रेनी गांव की गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ पेड़ काटने का विरोध किया। अधिक संख्या में महिलाएं पेड़ से चिपक गईं और बोली कि जंगल हमारी माँ है, पहले हमें काटो। जंगल को मायका बताकर पेड़ों की रक्षा की। इतना ही नहीं, पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को कटने से बचाया भी। और रक्षा सूत्र का नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा।
0: अच्छा ये नारा भी रहल
1: जी जी जी
0: मतलब प्रेरणादायक रहल ही है
1: जी
0: और लोगन के जागरूक करे बदे के रहल है
1: जी जी
0: जी।
1: बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि झारखंड के संथाल आदिवासी में एक अनोखी परंपरा पाई जाती है। यहाँ हर घर की बेटी का विवाह पौधे के साथ पूरे विधि विधान एवं गांव के पंचों की उपस्थिति में संपन्न होता है। और जिस पौधे से दुल्हन का विवाह होता है वह आजीवन उस पौधे को न तो टहनी तोड़ती है और न ही फल खाती है। इतना ही नहीं, उसके ससुराल जाने के पश्चात उस पौधे की रखवाली उसके घर के सदस्य करते।

0: और संथाली में इस विवाह को मातकोम बापला कहा जाता है। मातकोम का मतलब होता है महुआ और बापला का अर्थ होता है विवाह।
1: माने इतना श्रद्धा और समर्पण हो वहाँ पर। जी,
0: क्योंकि महुआ को दीर्घजीवी भी माना जाता है। जी
1: तो ये बतावे कि ये जो न आप बात बताओ थे कि महिला लोग बहुत सा आंदोलन भी कहीं नहीं शुरुआत से लेकर के और समझ ले इतिहास का भी बात बतौनी आप,
0: जी
1: तो पेड़ काटे से तो बचौनी जरूर,
0: जी
1: तो का कुछ जागरूक महिला भी ऐसा रहनी जो उनके पेड़ लगावे का भी काम कहीं नहीं,
0: जी
1: पेड़ बढ़ावे का काम कहीं नहीं,
0: जी जी
1: बताओ।
0: ये अगर हम बात करें तो एक कर्नाटक की सालू मारदा थिरक्का, यह होलिकल गांव की थी और उनका पूरा क्षेत्र रेगिस्तान था। लेकिन उस इलाके में उन्होंने अपने पति के सहयोग से लगभग 8,000 पौधों का रोपण किया।
1: 8,000
0: जी
1: पौधा
0: 8,000।
1: अच्छा
0: और उनका पोषण करके उस क्षेत्र को हरा भरा कर दिया।
1: अच्छा
0: सन 2019 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। और एक और महिला जो तुलसी गौड़ा, ये भी कर्नाटक की ही थी, उन्होंने लगभग 1,00,000 पौधे लगाए, 1,00,000,
1: अच्छा
0: और उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया गया। गौड़ा को जंगल और उसके पौधों के बारे में ज्ञान के कारण पर्यावरणविद जो है इनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट कहते थे, और उस
1: अच्छा
0: जनजाति के लोग उन्हें वृक्ष देवी कहते थे। जी
1: तो अब देखा है आप जैसे तुलसी गौड़ा का नाम लेनी तो याद आएगा कि पहले गांवन में हमान के देखा है कि जो आंगना में जो चौरा रहे और चौरा में तुलसी माई का पौधा रहे
0: जी जी
1: और नहले के बाद घर के जो महिला है जल चढ़ावे या पूजा करे बड़ा सम्मान दे, है ना। तो शुरू से ही परंपरा रहल हो
0: जी
1: कि अपने महिला लोग जो पूजा पाठ में हमेशा जो वृक्ष के संरक्षण में आगे
0: जी
1: रहें।
0: जी
1: जी
0: उन्होंने पूजा पाठ के माध्यम से ही बल्कि वृक्षों का संरक्षण किया।
1: तो ये बतावे कि ये जो एक नाम आप आउट ले रहनी है
0: जी मेधा पाटिकर
1: पाटकर, हाँ,
0: जी जी
1: तो इनकर कौने आंदोलन में जो ना इनका मुख्य भूमिका रहा,
0: इनकी नर्मदा बचाओ आंदोलन में
1: ये का रहा लेकर उद्देश्य।
0: जी, इसमें नर्मदा नदी पर विभिन्न निर्माणाधीन बांध परियोजनाओं का विरोध किया गया, जो पर्यावरणीय अवनति के साथ ही आदिवासी जनजातियों के अधिकारों का अतिक्रमण भी कर रही थी। इस आंदोलन में सुप्रसिद्ध लेखिका एवं समाज सेवी अरुंधति राय ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। मेधा पाटेकर उस समय पीएचडी कर रही थी और वह पढ़ाई बीच में छोड़कर इस आंदोलन से जुड़ गई थी।
1: तो आज का जो स्थिति हो हमारे पर्यावरण में महिला लोगों का जो योगदान हो आज का देखा में आओ तो कहां से पर्यावरण के लेकर के बहुत चर्चा अपने समाज में हो अपने देश में हो कि पर्यावरण बचाना हो, है ना। तो आज के का स्थिति हो महिला लोगों कितना योगदान करते हैं
0: जी। आज भी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। वंदना शिवा ने 1982 में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी के लिए देहरादून में अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी मुद्दों पर शोध कार्य हेतु समर्पित है। उन्होंने नवदान्य नामक एक संगठन की भी स्थापना की, जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जैविक कृषि, देशी बीज एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। पर्यावरण के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें राइट लाइलीहुड एवं ग्लोबल 500 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन के निदेशक सुनीता नारायण को सन 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनीता नारायण को ब्रिटिश मैगजीन प्रॉस्पेक्ट और अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया भर में मौजूद सर्वश्रेष्ठ 100 बुद्धिजीवियों की श्रेणी में शामिल किया है। इसी क्रम में पेशे से शिक्षिका मधु भटनाकर ने पर्यावरण संरक्षण हेतु जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत भी की है।
1: तो आज जो जलवायु का और जो पर्यावरण संरक्षण के बात कही जाता हो तो इमन इतनी अच्छी आप बात बतौनी है तो और क्या करे का आवश्यकता हो, क्या कैसे जागरूकता हो
0: जी। आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती बन गई हैं। ऐसे समय में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाएं प्रकृति के साथ जुड़ी होती हैं और वे घर परिवार से लेकर समाज तक

0: हरित जीवन शैली को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वे घरों में प्राथमिक स्रोत से लेकर अपशिष्ट संग्रहण, छटाई और रीसाइक्लिंग तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण सखी और स्वच्छता कर्मी के रूप में महिलाओं ने इसे हरित आजीविका का साधन बनाया है। वास्तव में दैनिक जीवन में जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग महिलाएं ही सुनिश्चित करती हैं।
1: तो आप भाई घर परिवार का जो जिम्मेदारी महिला लोगों के ऊपर होला उतर हये हो, ओकरे साथ साथ जो पर्यावरण के जिम्मेदारी हो भाई, एमन भी महिला लोग अग्रगण्य है और का बतावल चाहिए हमारे श्रोता बहन लोगन के।
0: एक महिला माँ भी होती है, पर्यावरण संरक्षण में माँ की भूमिका नींव के पत्थर जैसी होती है। वह अपने बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सिखाकर और प्रकृति से लगाव के संस्कार देकर भावी पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकती है। हम कहना चाहेंगे कि बदले हम तस्वीर जहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश यह हम सब फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं।
1: वाह, इतना बढ़िया संदेश आप देनी है प्रोफेसर डॉक्टर सरिता सिंह, आप इतनी अच्छी जानकारी देनी है पर्यावरण के संबंध में और पूरा पुराण से लेके इतिहास से लेके आज तक के महिला लोगों का क्या योगदान रहा है पर्यावरण के बचाव में, इतनी अच्छी जानकारी देनी, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनी लोगन, अभी नीके का बत कही सुनत रही हा कि पर्यावरण के संरक्षित करे में आपन महिला लोगन का योगदान है। डॉक्टर सरिता सिंह से बतियावत रलन हा सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, जानकारी देखा नीके का रहल, खाली सुने का ना ही गुने का भी
3: एकदम दीदी
2: अल्लाजो।
3: हाँ दीदी,
2: कहीं की खाली जानकारी का बात अगर सुनवावत रहू ना तो हमारो मन न भरी और बहनी लोगन भी न मन भरी उनका।
3: अरे काहे नहीं दीदी, देखा घुमा फिरा के कहत हो तो देखा पहले बहनी लोगन के निके का गीत सुनवा देवल जाये, मन मन शांत करा देवल जाये, तो बहनी लोगन ये निके का गीत सुने।
4: ए भौजी,

0: गंगा जैसन भौजी हमार, गंगा जैसन भौजी हमार।
1: लाजो हम इतना मीठ का गीत सुनवलू हा, सही में घर परिवार में अगर ऐसन बंधन रहे न सब कर तो कितना निक रहला और घर परिवार हमेशा सुख से भरल रहला। ओहू में न जौन बूढ़ पुरनिया लोगन रहलन ना उ तो जानला बट वृक्ष के समान होलन, उनकर ध्यान रखल बहुत जरूरी है।
2: एकदम दीदी देखा उनकर ध्यान रखल तो जरूरी है, साथे में देखा उनके साथे वक्त बिताओ सबसे बड़ी बात होला। कैसे की कई लोगन होलन की उनके अकेला छोड़ देवलन, लेकिन उनके साथे बैठे से देखा उनकर जो अनुभव होला उसे भी बहुत कुछ सीखे के मिलला। देखा उनके स्वास्थ्य का बात कैलू तो देखा ए समय गर्मी पड़ा था इनमें पिए वाला चीज जो है बेल का शरबत उनके जरूर देवे।
1: देखा बेल का शरबत तो तोरे घरे चल के पिया, बाकी बेल का फायदा ई है कि बेल का ठंडा तासीर होला, गर्मी में कर पाचन बहुत जेकर खराब रहेला उमन के राहत मिलेला और ऐसे जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता होले वही बढ़ेले शरीर का। तो देखा बेल का सेवन तो बहने लोगन के करे ही के चाहिए, जे घरे जाए के पियावे के भी चाहिए, लेकिन देखा घड़ी बीच में आके वो कुछो कहत हो
2: कि
1: चले का बेरा हो तो बहनी लोगन से विदा लिहल जाए और कहल जाए नमस्ते।

ग्रामीण बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं श्याम सुंदर पाल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में दादरा।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं श्याम सुंदरपाल। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं इनके स्वर में दादरा।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पाल का गाया लोकगीत। लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Energy, security, trade and investment topped the agenda of Prime Minister Narendra Modi's talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. Northeastern Council's meeting underway in Shillong. Union Home Minister Amit Shah chairs deliberations on tourism, agriculture, economic corridor development, infrastructure and connectivity. Veteran film producer Pehlaj Nihalani passes away. Republicans and Democrats jointly seek to end President Donald Trump's military action in Iran. U.S. House of Representatives passes resolution. Southwest monsoon sets in over Kerala. And first World Yoga and Sports Championship to begin in Ahmedabad this evening.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार

0: या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक

0: खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव के मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा। आज की प्रस्तुति है सना सलीम की।

बस सफर हमारा है, बाकी सफर के हिस्से हैं। जो साथ चले वो हम सफर, जो छूट गए वो किस्से हैं।

महफिल अजीब है ना ये मंजर अजीब है, जो उसने चलाया वो खंजर अजीब है, ना डूबने देता है ना उबरने देता है, उसकी आंखों का वो समंदर अजीब है।

जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक बार ही मिलती है।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम कहकशा। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:09 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.56 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से

0: लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
1: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षत मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
0: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
0: सब इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
1: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
0: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
1: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है, और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो ग्रे 4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब

एक मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण

0: सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के तहत अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लीकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो, ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो, मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के वेट बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400

0: केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी ना केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये

0: मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है, ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम

ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार।

0: विनोद कुमार जी, सर स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है, और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं, और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है। जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम धरती के गीत। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं बांग्ला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती के गीत। आज आपने सुना बांग्ला गीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी।

0: क्रूसो ऐसा कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्या तुम्हें पता है?
1: हाँ पता तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
0: अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसी भी क्या बात हो गई भाई?
1: कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
0: देखो अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकते हो।
1: अब हम क्या ही बताएं, सब कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार भी तो मासूम बच्चों पर ही हो रहा है। आज के इस समय में इस प्रकार की क्रूरता हमारे मन को विचलित कर देती है। रोज रोज अखबारों में, दूरदर्शन में, हर जगह केवल बच्चों के प्रति क्रूरता, ये सब देखकर ही मन दुखी हो जाता है। और अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें भी तो क्या करें। हे भगवान, आप ही सभी की रक्षा कीजिएगा, आप ही सभी पर अपनी कृपा कीजिए।
0: ओहो, तो ये बात थी तुम्हारे इस मुरझाए हुए चेहरे का कारण? ये था। वैसे तुम इस बात की चिंता मत करो, पहले अपने दोस्तों को अपने बारे में बता देते हैं, फिर इस बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के युवाणी कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपके ये दो रेडियो साथी, यानी मैं दिव्या।
1: और मैं अमरजीत।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अमरजीत जिस विषय पर बात कर रहा था उस पर कदम उठाया गया है, और हम आपको बता दें कि इसीलिए आज के दिन मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
6: आक्रामकता के अनुसार आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को किया गया था और उस वक्त से आज तक इसे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण, विशेष रूप से युद्ध और संघर्ष के शिकार हुए बच्चों का दर्द को पहचानना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना है।
5: वैसे तो पहले ये मूल रूप से केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसका क्षेत्र बढ़ाकर सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण, जैसे घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार आदि, इन सब के शिकार हुए बच्चों को शामिल किया गया।
6: भारत में बच्चों को किसी भी प्रकार की आक्रामकता एवं हिंसा से बचाव के लिए भी कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान में अगर भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों या खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है,
5: और पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में भी हम आपको बताएं कि बच्चों का यौन शोषण और हिंसा से बचाने के लिए ये एक पूरी तरह से युक्त और प्रभावी कानून है।

0: वैसे आज के समय में शिक्षा होने के पश्चात भी अबोध बच्चों का शोषण कितना सामान्य है। खेतों से लेकर घरों तक, दुकानों से लेकर फिल्म के सेट तक, बच्चों का शोषण आंखों के समक्ष हो रहा है। किंतु अब प्रश्न यह उठता है कि फिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कारण है इसका? इसका उत्तर कौन देगा? एवं इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जा सकता है?
1: क्योंकि इस नियम में भी कई प्रकार के विरोधाभास हैं। जो बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, तो वो 8-10 घंटों के शिफ्ट में सिनेमा के सेट पर काम करते हैं। ये किस प्रकार से उचित है, ये क्या हम स्वयं बता सकते हैं?
0: और बच्चों को महान व्यक्तित्व बनाने के प्रयास में उनके नन्हे हाथों से बचपन छीन लेना कहाँ का न्याय है? क्या यह उनका शोषण नहीं? अंत, हम सभी को इन विषयों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।
1: और इसीलिए दोस्तों, ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों को प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा और स्वस्थ वातावरण का अधिकार है। समाज, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा हिंसा और आक्रामकता का शिकार ना बने। बच्चों का सुरक्षित और खुशहाल बचपन ही किसी देश और समाज का उज्जवल भविष्य की नींव है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। जब कभी भी ये वाक्य हमारे कानों में मिश्रित होते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन में करंट दौड़ गया हो। आज भी हमारे आंखों से आंसू की धारे बह जाती है। आंखों के सामने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।
0: आज भी वो समय याद आता है जब हम सब अपने दिन की शुरुआत रेडियो के साथ करते थे। रेडियो की वो आवाज़ जब कभी भी हमारे कानों में पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो जैसे किसी ने हमारे कानों में मिश्री ही घोल दी हो। उस आवाज़ के कानों में पड़ते ही मन को एक अजीब सी शांति प्राप्त होती थी।
1: तो आइए अब एक झलक आकाशवाणी की गरिमामय सफर की। दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से मानी जाती है।
0: 30 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बम्बई और कलकत्ता में नियमित प्रसारण शुरू किया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1930 में IBC बंद हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण सेवा अपने हाथों में ले ली। 1930 में इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS रखा गया।
1: 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR कर दिया गया। स्वतंत्रता के आधी रात यानी 14-15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी आकाशवाणी से ही प्रसारित हुआ था।
0: आज़ादी के समय भारत में एयर के केवल 6 स्टेशन थे। आज यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में गिना जाता है। आकाशवाणी का समाचार प्रभाग देश का सबसे पुराना है और विश्वसनीय समाचार सेवाओं में से माना जाता है। विविध भारती सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी ताकि रेडियो से लेने की लोकप्रियता को मुकाबला किया जा सके।
1: विविध भारती पर प्रसारित होने वाला हवा महल और जयमाला जैसे कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हैं। जयमाला कार्यक्रम में कई बार भारतीय सैनिकों के लिए फिल्मी कलाकार संदेश और गीत प्रस्तुत करते थे। प्रसिद्ध उद्घोषक अमीन सयानी का कार्यक्रम बिना का गीत माला रेडियो कार इतिहास का बेहद लोकप्रिय शो माना जाता है।
0: तो आइए इस खास अवसर पर सलाम करें उन सभी आवाजों को जो कभी हमारी सुबह की शुरुआत बनी तो कभी रातों की तन्हाई का साथी। उन उन सबको और उन तकनीशियनों को, उन कलाकारों को जिन्होंने आकाशवाणी को सिर्फ संस्था नहीं एक भावना बनाया।
1: 90 वर्षों के इस गौरवशाली गाथा को हमारा नमन, हमारा प्रणाम। आकाशवाणी, आवाज जो पीढ़ियों से दिलों तक बसती आई है।

0: दोस्तों, क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं?
1: बिल्कुल, पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं और परियोजनाओं के कारण वाराणसी यानी कि बनारस में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। काशी को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ते हुए उसके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है।
0: सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में काफ़ी सुविधा हुई है और गंगा घाट से मंदिर का सीधा संपर्क स्थापित हुआ है।
1: वाराणसी में सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, रिंग रोड और नए पुलों का निर्माण भी किया गया है, जिससे शहर में यातायात पहले की तुलना में और ज्यादा सुगम हो जाए। और शहर के कई क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।
0: नमोघाट जैसे नए पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। हवाई यात्रा को बेहतर बनाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तार का कार्य चल रहा है। नए टर्मिनल और रनवे के निर्माण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वाराणसी की देश विदेश के कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
1: शहर में देश का पहला शहरी रोपवे प्रोजेक्ट भी विकसित किया जा रहा है। इसके शुरू होने पर कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया क्षेत्र तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर हो जाएगी। उससे दूर क्या, लेकिन हाँ, काफी राहत उससे जरूर मिलेगी।
0: खेलों को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विस्तार किया गया है, जहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और शिविर व्यवस्थाओं में भी कई सुधार किए गए हैं।
1: और प्रेजेंट की बात करें तो मणिकर्णिका घाट क्षेत्र के उसको और सुधारने के लिए, उसको और सुंदर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है और भी कई सारे विकास परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी आंकड़ों के अनुसार वाराणसी में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई नई परियोजनाएं भी आने वाली हैं और उसका निर्माण भी जारी है।
0: कुल मिलाकर पिछले 12 वर्षों में बनारस में धार्मिक पर्यटन, परिवहन, खेल, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। आज काशी अपनी प्राचीन विरासत को संजोए रखते हुए आधुनिक विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: और यही कारण है दोस्तों कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और वाराणसी एक आधुनिक और सुविधा संपन्न शहर के रूप में विकसित हो रहा है। अच्छा अमरजीत, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, तुम मुझे आज ये बताओ कि तुम्हारी पसंद क्या क्या है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या काम करना अच्छा लगता है या तुम्हारे क्या क्या शौक हैं?
0: अगर हम सच कहें तो कुछ पसंद है,

0: जैसे कि भोजन पकाना, चित्रकारी करना, घोड़े दौड़ाना, गाय चराना, नाव चलाना, कविताएं लिखना, फिल्में देखना और बहुत कुछ हमें पसंद है,
1: बाप रे।
0: जैसे नृत्य करना, पुस्तकें पढ़ना, भजन गाना एवं घूमना फिरना। किंतु
1: इतनी सारी पसंद है तुम्हारी, भी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम आगे कुछ कह रहे थे?
0: किंतु अगर कोई पूछे कि हमारी पसंद क्या है, तो वो संगीत है। गाना गाना हो या गाना सुनना, हम बिना थके बिना उबे आजीवन संगीत सुन सकते हैं। गाना सुने बिना तो हमें कभी चैन ही नहीं आता। जैसे ये स्क्रिप्ट लिखते समय भी हमने गाना सुनते ही लिखा है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता ही नहीं, हम क्या करें। जानते हो क्यों? क्यों? ये केवल एक कला नहीं, किंतु हमारी आत्मा है। जैसे कोई परवाना समा के बिना भी जी नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार हम भी संगीत के बिना रह नहीं पाते।
1: वैसे ये तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक सुनना ये एक ऐसा शौक है जो हर किसी का है। मतलब चाहे आपका मूड खराब हो, चाहे अच्छा हो, चाहे कैसा भी हो, आप बस एक म्यूजिक सुन लीजिए।
0: हाँ, आप सही कह रही हैं। ठीक वैसे ही हम तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे दिन का शुरुआत ही, हमारे दिवस का शुभारंभ ही प्रतिदिन भजन गाकर महादेव एवं माँ दुर्गा की नित्य पूजन ध्यान से होती है। उसके उपरांत पंचायत या पंच देवताओं की नित्य वंदना करते हैं हम। फिर उसके बाद हम अपने संगीत का अभ्यास करते हैं और सारे दिन का काम निपटाते हैं गाने गुनगुना गुनगुना कर।
1: वाह,
0: कभी माँ लता मंगेशकर जी से लेकर आशा जी तक, तो कभी उषा जी, सुमन कल्याण जी, अलका जी, कविता कृष्णमूर्ति जी के, केश चित्रा जी, तो कभी किशोरदा, रफ़ी जी, मुकेश जी, सोनू जी, सांझ जी, के एवं अन्य सभी गायकों को सुनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम हनुमान जी का भजन सुनने के लिए हरिहरन जी को सुनते हैं, रामायण के लिए रविंद्र जैन जी को, गजल के लिए जगजीत जी को, और हम तो घूमर में केवल सीमा मिश्रा जी को ही सुनते हैं। फिर भोजपुरी में माँ शारदा सिन्हा जी, कल्पना पटौरी जी, चैती विरहा मालिनी अवस्थी जी, और भोजपुरी के सदाबहार गानों के लिए केवल पवन सिंह और भरत शर्मा जी। शायद सूची अति विशाल हो गई है, किंतु यही तो हमारे संगीत के प्रति प्रेम एवं समर्पण का दर्शाता है।
1: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही अमरजीत, और शायद गाने को लेकर मैंने इससे ज़्यादा विस्तारण, या कह सकते हैं इतना ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने कभी नहीं सुना, मैं सच कहूँ तो। पर ये तो तुमने अपनी पसंद के बारे में बताया, जो इतने सारे जो गीत तुमने गायकों के बारे में बताया, तो ये तो तुम्हारी पसंद है,
0: जी
1: लेकिन मैं तुम्हें आज अपनी पसंद का गीत सुनवाऊंगी।
0: बिल्कुल।

0: तो अमरजीत, इतने हम अब क्यों ना अपने दोस्तों का थोड़ा ज्ञान भी बढ़ा दिया जाए।
1: जी
0: इतनी
1: बिल्कुल
0: बातचीत तो हो ही गई। शुरुआत करते हैं अपनी यू डायरी से। तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी शब्द है निरूपण, जिसका अर्थ होता है किसी विषय विस्तार या विवेचन करना, या फिर विश्लेषण करना, या उसे दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसका मुख्य रूप से उपयोग किसी विचार, सिद्धांत या फिर तथ्य को समझाने के लिए किया जाता है। और अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि रामायण में सीता माता का हरण का निरूपण बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पाई चार्ट कंपनी के बजट और खर्चों का बेहतरीन निरूपण करता है।
1: सो फ्रेंड्स, लेट अस गेट नो अबाउट द इंग्लिश वर्ड एंड फॉर टुडे इट इज डेलिजेंट मीन्स शोइंग केयरफुल कंटिन्यूअस एंड एर्नेस्ट एफर्ट इन वंस वर्क और ड्यूटीज। जनरली इट डिस्क्राइब्स समवंस हु इज हार्ड वर्किंग थरो एंड डेडिकेटेड टू कंप्लीटिंग अ टास्क। फॉर एग्जाम्पल, सी इज अ डेलिजेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज रिव्यूज हर नोट्स बिफोर एन एग्जाम। द डेलिजेंट Employee finished the project ahead of the schedule by paying close attention to every detail.
0: तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज के दो शब्द यानी कि निरूपण और डिलिजेंट, इन दो शब्दों का अर्थ समझ आया होगा और जरूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल भी सही तरीके से कर पाएंगे। और वैसे तो आपको दोस्तों 4 जून का दिन इतिहास में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भी दर्ज है। जैसे 1783 में फ्रांसीसी आविष्कारक मोंटो गोफ्लियर ने पहली बार हॉट एयर बैलून का सफल प्रदर्शन किया था।
1: 1857 में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोह का नेतृत्व संभाला था।
0: साथ ही साथ 1919 में आज ही के दिन अमेरिकी सीनेट ने महिला मताधिकार विधेयक पारित किया था, जिसके बाद से महिलाओं को वोट देने का कानूनी तरह से अधिकार मिल गया था।
1: और दोस्तों, आज ही के दिन अशोक सराफ 1947 में भारतीय सिनेमा और मराठी थिएटर के दिग्गज हास्य अभिनेता का जन्म भी हुआ था।
0: और अनिल अंबानी

0: था 1949 में, जो एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और रिलायंस समूह है, और उनके पूर्व चेयरमैन भी हैं, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था।
1: तो दिव्या, क्या कहती हो? अपने दोस्तों को सवाल भी बता दिया जाए?
0: बिल्कुल, लेकिन पहले कल के सवाल का सही जवाब और उनके विनर्स बताते हैं।
1: CBSI के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है लोखंडे प्रशांत सीताराम।
0: और जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है वो हैं चंदौली से चंदा, और मुकेश प्रजापति सिग्रा वाराणसी से, ग्राम सेमरौल उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं रवि मौर्य, और ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल और भारती बघेल, ये हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से है प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। संगीत कर नगरी खंडवा से हैं श्यामा बाई रायकवार। तो आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज ऐसे ही हमारा कार्यक्रम सुनते रहेंगे और हर रोज हमें ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, और हम हर रोज आपका नाम ऐसे ही लेते रहेंगे। और फिलहाल ध्यान देते हैं अब अपने आज के सवाल की तरफ। और हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए। वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? और इसका उत्तर आप हमें दे सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी, या फिर हमारी मेल आईडी youth_AIR_VNS@gmail.com पर। तो फटाफट से जाइए और अपना आंसर भेजिए। तब तक के लिए इस गीत को एंजॉय कीजिए।

0: तो दोस्तों अब बारी है रोजगार सूचना की, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तरफ से आई है, जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि CGL 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई से ही शुरू हो गई है और उम्मीदवार 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है।
1: और अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार ही CGL परीक्षा 2026 के लिए पात्र होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, ये आप फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानते हैं क्या? ये एक ऐसी मूवमेंट है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है और इसका उद्देश्य देश के लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।
1: इस अभियान की शुरुआत 19 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती भी मनाई जाती है। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य संदेश है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही एक कुशल एवं सफल जीवन की पहचान है।
0: आज के समय में लोगों की जीवन शैली तेजी से बदल रही है। पहले लोग और ज्यादा ज्यादा पैदल चलते थे, खेल कूद में भाग लेते थे और शारीरिक श्रम करते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और दूसरे आधुनिक सुविधाओं के कारण लोग अधिकतर समय बैठ कर ही बिताते हैं।
1: बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी स्क्रीन के सामने काफी समय बिताने लगे हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे अनेक बीमारियां समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में फिट इंडिया मूवमेंट लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है।
0: इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि फिट रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। रोजाना थोड़ी देर पैदल चलना, दौड़ करना या फिर योगा करना, साइकिल चलाना, खेल खेलना या फिर नियमित व्यायाम करने से भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है।
1: फिटनेस को जीवन का एक हिस्सा बनाना ही इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यदि हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधियां करें, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में योग का भी विशेष महत्व है।
0: बिल्कुल, जैसे योग तो सबसे ज्यादा हमारे भारत में होता है और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो रहा है। समय की कद्र करते हुए अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। इतना ही कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हर रोज युवाणी ऐसे ही सुनते रहिए। आज

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: खबरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में पर्यटन विभाग के कामकाज का समीक्षा कैली। एगो रिपोर्ट।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश के कानून व्यवस्था, आवे वाले आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा और केंद्र सरकार का 12 बरिस पूरा होकले पर तय जन भागीदारी वाले कार्यक्रमन का समीक्षा कैने। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: भारत के मेजबानी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह का 2 दिन का बैठकी आज वाराणसी के एक निजी होटल में शुरू हो गई। इसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के लेके 11 देशन का प्रतिनिधि हिस्सा ले रहा है। हमनी का वाराणसी प्रतिनिधि बतौलन की बैठकी से पहले अलग अलग देशन से आयल प्रतिनिधियन का परंपरा के हिसाब से स्वागत कैल गईल। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल बैठकी से जुड़ल खास मुद्दन के बारे में जानकारी देने।
3: तो बैठक में जो मेन मुद्दे है कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी।
0: पिछला 12 बरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर देश में खूब तरक्की भइल बा। कारोबार में सुगमता माने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के कोशिशन के लेके प्रस्तुत

0: एगो रिपोर्ट।
1: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गोरखपुर के लेके प्रदेश के कुछ और जिलों में आज हल्का है बुन्नी परले से लेके कहीं कहीं बरखा भैले के नाते लोगों के भीषण गर्मी और उमस से फिलहाल थोड़ी के राहत मिलल बा। एह बिचे मौसम विभाग आवे वाला 6 जून ले प्रदेश में कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ले का संभावना जतौले हवे। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: मीडियम 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो आइए जान लेते हैं आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

क्षेत्रीय लोक एवं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज हमको सुनाएंगे सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का अगला अंक आज हम आपको सुनाएंगे रात्रि 8:10 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। हमारी आज के कलाकार हैं आबिदा परवीन। संस्कृत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज रात 7 बजे।

गृह जगत कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे। इसमें आज हमको सुनाएंगे मुर्गियों में कृत्रिम उष्मायन और चूजों की हैचिंग विषय पर डॉक्टर अनुराधा कुमारी और सतीश कुमार से बातचीत। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब जान लेते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

खेती की बातें ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। इसमें ज्वार की खेती के विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर। गांधी चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 6:25 पर।

श्री रामचरित मानस संगीत में पाठ आप सुनेंगे कल प्रातः 6:40 पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे गायन। कलाकार देवाशीष दे। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा कल 9:50 पर। हमारे कलाकार होंगे सुदर्शन यादव और साथी। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हम लेकर हाजिर होंगे कल दिन में 11:00।

0: अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में कबीर सिंह का गीत।
1: की गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल का फिल्म इश्क तेरा का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही बोलो में आप सुन

0: सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्यः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पं ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राविडः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला संबंधानां विविधाः पक्षाः समीक्षिताः। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेशः औषधि निर्माणं स्वास्थ्य सेवा परिवहनं तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारस्य उपायाश्च चर्चिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् रुद्रेन्द्र टण्डनः प्रोक्तवान् यत् द्विपक्षीय वार्ताः उभयोः देशयोः सम्बन्धं सुदृढीकरोति।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
3: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
1: डेल्सी रोड्रिग्स महाभागा द्विदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः नवदिल्लीम् आगता। अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोः देशयोः आर्थिक ऊर्जा क्षेत्रयोः सहयोगः अधिकः सुदृढः भविष्यति इति अपेक्षते। विदेश मंत्री एस जयशंकरः वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदयेन सह सममिलत् द्विपक्षीय सहयोगस्य सुदृढीकरणे प्रदत्तं बलम्। नवदिल्ल्यां विदेशमंत्री एस जयशंकरः अद्य प्रातःकाले वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदयेन सह सममिलत्। अस्मिन् अवसरे उभयोः देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणं विविधेषु क्षेत्रेषु सहकार विस्तारश्च चर्चितः। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता तथा केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मण्डलस्य पूर्वाध्यक्षः पहलाज निहलानी अद्य मुंबई नगरे दिवंगतः। सः 76 वर्षीयः आसीत्। चलचित्र निर्मातृत्वेन असौ हथकड़ी इति चलचित्रेण स्वकार्य जीवनस्य आरम्भं कृतवान्। इल्जाम इति चलचित्रेण अभिनेत्रे गोविंदाय प्रमुखस्य अवसरस्य प्रदानस्य श्रेयः अपि तस्मै वर्तते। 2015 वर्षे सः केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मण्डलस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्पं ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। एषः चतुर्थः अवसरः अस्ति यदा प्रतिनिधिसभा ताभिः युद्धसम्बद्धाभिः शक्तिभिः सीमिता भवेत् इत्यर्थं प्रयासं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विभागेन अद्य केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राप्रिडः आगमनस्य पुष्टिः कृता।

मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: बोला भैया।
0: हाँ नंदू भैया,
1: देखा हो मौसम तो रह के लुका छिपी करत है,
0: बिल्कुल करत भैया,
1: रह के बदरी आ जाता और रह के एकदम जो है टह टह
0: घाम
1: हो
0: जाता
1: तो बड़ा संहार के बचा के रहे के हो। और एक चीज कही,
0: हाँ कहा भैया।
1: कि पहले और आज में देखल जाए तो अपने खेती किसानी में भोला भैया बड़ा जो है परिवर्तन हो गल बा।
0: कहे ना भैया।
1: पहले देखा रहे का कि बब्बा कक्का लोग जो है अपने बाबूजी लोग भी जो कि भाई बरधा लेके आ कान्ही पे हर टांग के जोन है जाए खेते आ खेत जोताएं।
0: कहे ना भैया
1: आज देखल जाए तो वो लोग से जितना समय में वो जितना रकबा जोताएं
0: जोते हैं
1: उससे कम समय में आज जोन है ट्रैक्टर वो काम
0: ट्रैक्टर
1: करते
0: काम कर
1: भैया।
0: देता। अब पहले समय में देखा भैया जोन बात कहला हल वाला, तो घरे का सान होता रहा, बरधा अगर बनल रहे तो 4 कोस 10 कोस तक ही रहे कि फलाने के यहाँ देखा आपका बब्बा पनले रहना देखा एकदम चमके लपालप हो।
1: भैया हो बड़ा उनकर ध्यान भी रखल जाए, काहे कि सब जाने कि एनही के बदौलत जोन है घरे का जोन है राशन तैयार होए
0: राशन
1: वाला
0: कहे
1: है।
0: नहीं भाई, और घर के सदस्य जैसा रहना।
1: सदस्य जैसा
0: और
1: है।
0: इतने ना भैया आपके नाम अनुभव हुई नंदू भैया, आपके यहाँ से समझ लो बरधा मंगनी में जाए हो।
1: भैया रहे का कि चरचर जोड़ी रहे अपने यहाँ बरधा आ हो का कि अगर गैया अगर बछरू भी आए गई तब बड़ा खुश हो सब कि देखा हमारे एक ठे जो ना हर बढ़ल आ कितनी खुशी रहे। आज के समय में वो हिसाब से देखा जाए तो बड़ा बदलाव हो गलो
0: हाँ
1: माहौल।
0: पर बदलाव भी जरूरी है नंदू भैया, काहे कि देखा जोन बरदा जोन काम करता ना अबू जो आप कहला है ट्रैक्टर जोन हो, वो देखा कम समय में कई बीघा खेत अपन जोत देते हो।
1: बिल्कुल भैया हो देखा भोला भैया ये कहल जाए कि समय के साथ साथ जैसी जनसंख्या बढ़ल
0: बड़ा
1: वैसे वैसे हर चीज़ में बदलाव आवत गल कि अपने खेती किसानी में का चीज़ का इस्तेमाल कैल जाए
0: जय
1: कि कम जोन है लागत लगा के ज़्यादा उत्पादन ले लेवल जाए। आ जोत तो भैया देखा बढ़त ना हो,
0: बिल्कुल ना बढ़ता हूँ
1: जनसंख्या बढ़ल जोत ना बढ़ल
0: जोतना बढ़ल
1: तो
0: अधिक।
1: अभी देखे के हो कि जै कैसे हमहन जोन है ज़्यादा उत्पादन ले लेवल जाए तो तकनीक तो जरूरी है।
0: बिल्कुल अई तकनीक में भैया देखा कृषि यंत्रण में देखा बीज बोए वाला जो अपन एक मशीन आयल हो और एक निराई गुड़ाई वाला यंत्र जो आयल हो, वो देखा एक साथ जितना भी खेते
1: बड़ा
0: में।
1: भैया
0: हाँ
1: सीड्रिल वगैरह कुल आ गए हैरो आ गए देखा निराई गुड़ाई कर देते बा खरपतवार के एक ओरी
0: निकाल देते
1: निकाल
0: हो, एक
1: देते
0: ओरी कर
1: हुए
0: देते हो।
1: आ अब हर के ही रूप में देखा जाए तो बड़ा हर आ गए हुआ किसिम किसिम का
0: अब
1: बाड़ा।
0: पहले समय में नंदू भैया यही कुल काम करे खातिर देखा मजदूर लगाए के होते रहो, और अब कहा कि देखा मजदूर उतना आसानी से अब मिलत भी ना हुआ।
1: भैया हो देखा एक चीज ही कहल जाए कि पंच लोग भी ये बात के जानत हुआ कि अब लोग खेती से तनी सी दूर होए का प्रयास के लिए कहा शहर बस गल
0: बस
1: तो
0: गए
1: वहाँ भी लोगन का जरूरत पड़ल तो गांव से लोग शहर पलायन करे
0: पलायन
1: लगल
0: करे लगलन।
1: तो एक तरह से देखल जाए तो गांव में कमी पड़े लगल
0: कमी
1: भैया
0: पड़े
1: काम
0: लगल
1: करे वालन का।
0: और घाटा भी कम होए लगल,
1: हाँ घाटा तो
0: जैसे
1: कम हो
0: जैसे
1: जाए भैया
0: संख्या
1: जनसंख्या।
0: जनसंख्या बढ़ल तो घाटा कम होए लगल, तो जब घाटा कम हुई तो उत्पादन कम होबे करी।
1: भैया भैया
0: तो उ दृष्टि से भैया अपन जोन ई जो तकनीक हो ना एके अपनावल बहुत जरूरी
1: बहुत
0: हो।
1: जरूरी बा भैया। पहले देखा सिंचाइयों के अगर देखल जाए तो सिंचाई में भी का रहे कि भैया वह ढकुली रहे वह
0: ढकली
1: रहट रहे
0: रहट रहल है
1: आ पूरे जगह जगह जो है नहर का भी जाल ना बिछल
0: ना
1: रहे।
0: बिछल।
1: लेकिन आज देखा परिवर्तन हो गल हो
0: बिल्कुल भैलो।
1: तकनीक भी बड़ी अच्छी अच्छी आ गल है कि एकदम गोइड़े तक खेते के भैया नहर आ नहीं तो नाली जोन है वो आए गए है कि भाई जब नहर पानी दे बा नाली में पानी आ जाता हो।
0: नहर हो गल खेते खेते पंपी सेट हो गल, और वो पंपी सेट के माध्यम से देखा नाली बन गल।

0: कि हर जगह खेते खेते
1: बढ़िया,
0: दो
1: बहुत
0: चार दस
1: बढ़िया।
0: कोस फलाने के खेत में पानी चल
1: हाँ
0: जात
1: भैया,
0: बा।
1: चल जात बा पानी। एक चीज और भी कि समय के साथ तकनीक के बढ़ने से एक चीज और आगल कि भाई हमन जैसे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करत ली, पूरा खेत बोर देवल
0: बोर
1: जाए,
0: देवल जाए।
1: उतना जरूरत भैया फसल के रहल ना, फिर भी हमन पानी देवल
0: पानी
1: जाए
0: देवल
1: तो
0: जाए।
1: लागत तो एक तरह से देखल जाए बढ़त, लेकिन नुकसानी भी करत रहल।
0: नुकसानी भी करते हो।
1: आज के समय में देखा तकनीक इतनी बढ़िया हो गई बा भैया, स्प्रिंकलर आगल है कि फुहारा के तरीके से जोन है जैसे बरसात होए
0: बरसात
1: वैसे
0: होले।
1: पानी दे देत बा फसलन
0: और
1: के।
0: ओमेन कहा कि पानी के बचत भी
1: बचत
0: होतो।
1: होत है भैया।
0: इतने ना नंदू भैया, देखा आजकल जो
1: ड्रिप
0: एक
1: ड्रिप वाला जोन
0: ड्रिप
1: आगल।
0: वाला हो गया और एक ड्रोन जो ड्रोन चलल हो, ड्रोन से देखा दवाई के छिड़काव होतो
1: भैया भैया
0: और
1: हो देखा पहले तो वो पीठी पे लाद के
0: लाद के
1: लोग छिड़के, आज भी वो छिड़काव का तरीका बा।
0: अभी भी हो।
1: हाँ लेकिन जैसे अब ड्रोन करत बा तो कम समय में ज़्यादा खेत जितने
0: आप
1: बा ओकर तो छिड़काव हो जाए
0: बैठे
1: भैया
0: बैठे भाई
1: आराम से।
0: देखत हो ड्रोन अपने पास जो नौकर यंत्र हो और अपन छिड़काव करत हो।
1: छिड़काव कर देत बा भैया। उसे एक लाभ ये भी हो जाए कि जैसे हमन तो हाथ मुंह नाक के कुल बांध के जो है बढ़िया से दस्ताना उस्ताना पहन के हाथ में, तब जो है कुल छिड़काव कर
0: छिड़काव
1: जाए,
0: कर ले कहे
1: और
0: नहीं।
1: ड्रोन करी तो भाई ये एक तरह से बचाव तो रही।
0: हाँ स्वास्थ्य का बहुत बचाव है। इतना ना
1: बिल्कुल।
0: नंदू भैया देखा पहले ये सब तकनीक में अपन माटी के जोन जांच रहल है एकर अभाव रहे,
1: ये
0: पर
1: भैया
0: अब
1: अब
0: देखा।
1: ये बहुत सही चीज़ हो गल भैया। हाँ का कि हमहन तो अंधाधुन भैया खाद के रूप में जो रासायनिक खाद डालल जाए,
0: डालत ही
1: अब वहाँ का चीज़ का कमी है तत्व का एक जानकारी न
0: एकर
1: रहे,
0: जानकारी ना
1: तो
0: हो।
1: अभी जौन है जाँच होत बा भैया, मृदा का स्वास्थ्य कार्ड बन जाते
0: बन
1: ऐसे
0: जाता
1: जौन है कुल खेत का जानकारी हो जाती कि माँ कौन तत्व का कमी है, कितना खाद डाला, कितना पानी डाला, आ कवने तरीके से उन्नतशील प्रजाति को लागल ही कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अब
0: हो के।
1: होए लगल भैया। अब पंच लोग भी बोला भैया ये कुल चीज़ की समझत बूझत हुआ
0: बिल्कुल
1: आ एक
0: समझत हूँ,
1: दूसरे से साझा भी करत
0: साझा
1: हैं,
0: करत हूँ।
1: तो एकर लाभ सब मिलजुल के ले था भैया तकनीक का। अपने पंचायती में बोला भैया वही बात हुई और,
0: अच्छा
1: लेकिन है जो संदेश है ना एक पंच लोग के सुनवा देव मैं।
0: बिल्कुल भैया सुनवा दा।
2: अरे रे सावधानी हटी तो जेब कट।
3: मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड, तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी।
2: पर पैसे तो गए।
3: नहीं नहीं नहीं पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करने पड़ेंगे भरपाई।
4: और सुनिए समय से जो की शिकायत
5: मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत।
6: अब यह कहता है कि
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नंदू भैया, सनेस तो हो गए, बाकी एक मतलब जरूरी बात कही हो तो विषय हो मुर्गियन में कृत्रिम उष्मायान और चूजन का हैचिंग कैसे कर जाए, एक बारे में डॉक्टर अनुराधा कुमारी से सतीश कुमार भैया की बात कही हो, पंच लोग भी सुने और हम लोग भी सुन लिया।
4: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर अनुराधा कुमारी जी, जे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग दक्षिणी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय बरकच्छा मिर्जापुर में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि मुर्गियन में कृत्रिम उष्मायन और चूजो की हैचिंग, जो ना के अपनी गवई भाषा में कहल जाला कि भाई मशीन के द्वारा या मशीन की मदद से जो अंडा हुआ उसे चूजा कैसे निकाले के है, तो ये विषय पर डॉक्टर मैडम से हमने का जानल जी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मैडम आपका हमने ये कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
5: धन्यवाद आपका।
4: तो सबसे पहले आप हमारे किसान भैया उनके ये बताए कि कृत्रिम उष्मायन है क्या चीज।
5: अंडो से चूजे निकालने की मूलतः दो विधि है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम उष्मायन।
4: अच्छा,
5: प्राकृतिक विधि में जैसा हमारे किसान भाइयों को ज्ञात होगा कि अंडे सेने के लिए मुर्गियां उस पर

0: रहती हैं। और इस प्रक्रिया में जिस मुर्गी का चयन होता है उसे कुड़क मुर्गी कहते हैं। मुर्गियां लगातार 21 दिनों तक अंडों पर बैठकर अपनी शरीर की गर्मी अंडों को प्रदान करती है। इस विधि में मुर्गियां अपने शरीर के आकार के अनुसार 10 से 15 अंडों को सेती है और तत्पश्चात 21 दिनों में हमें चूजों की प्राप्ति होती है। यह विधि उष्मायन की छोटी किसानों के लिए लाभदायक है। इस विधि से अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए जो मुर्गी का चयन होता है उसे कुड़क मुर्गी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: अपने फार्म पे आसपास में कुड़क मुर्गी के पहचान के लिए पहचान हम कैसे करेंगे? कुड़क मुर्गी एक देसी मुर्गी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कुड़क मुर्गी नॉर्मली सामान्यतः वो अंडे को उत्पादन नहीं करती है। इस विधि से जो चूजों का उत्पादन होता है वो ज्यादा समय लगता है, मतलब कम समय में हम ज्यादा चूजों की प्राप्ति नहीं कर पाते।
1: अच्छा।
0: इसलिए ज्यादा चूजों की प्राप्ति हेतु हम कृत्रिम उष्मायन अर्थात आर्टिफिशियल हैचिंग मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं।
1: तो ये जो आप मशीन बताओ थी मैडम, तो इका कहल जाओ कि ऐसे हमार जोन किसान भैया लोग हो, जोन भाई गांव में रहत हुआ, या कहल जाओ कि जोन लोग एकर व्यवसाय भी कल चाहत हुआ चूजा का, तो ये लोग अपने खुद से एकर कर सके ना?
0: हाँ, हमारे किसान भाई इस कृत्रिम उष्मायन की प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद इसकी मशीन को कैसे, इसका रख रखाव करना है, इस मशीन का संचालन कैसे करना है, किस तरह के अंडों का चयन करना है, इस मशीन के प्रमुख घटकों को समझ कर आसानी से इसे एक स्वरोजगार के रूप में अपना कर अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। उस सारे किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ, भारत वर्ष में 2023 और 24 में अंडा उत्पादन 142 बिलियन था और हमारे यहाँ के मीट का उत्पादन 10 और से 11 मिलियन टन था। अगर हम सिर्फ मुर्गी के मांस की बात करें ये 5 मिलियन टन से ज्यादा था। दिन पर दिन हमारे देश में अंडों और मांस की जरूरत बढ़ते जा रही है। इस जरूरत के लिए हमें ज्यादा संख्या में चूजों की मांग है। हम कृत्रिम विधि से इतनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मशीन का उपयोग करते हैं जिसको कृत्रिम उष्मायन कहते हैं। कृत्रिम उष्मायन के द्वारा हम एक साथ हजारों और लाखों चूजों को प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम उष्मायन में जिस मशीन का उपयोग होता है उसे उष्मायनन या इनक्यूबेटर मशीन कहते हैं। इस मशीन में एक नियंत्रित तापमान आद्रता देकर चूजों की प्राप्ति की जाती है।
1: अच्छा मैडम, जो नहीं हैचिंग होता है ये क्या चीज होला?
0: जब मुर्गी अंडों पर बैठती है कृत्रिम विधि में तो 21 दिन बाद चूजे निकलते हैं। इस चूजे निकलने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया हम कृत्रिम विधि द्वारा करते हैं जैसा कि मैंने बताया इनक्यूबेटर मशीन के द्वारा, तो इसको कृत्रिम उष्मायन कहते हैं।
1: अच्छा मैडम, अगर लोग जोन मशीन की मदद से आप जोन बताओ थे अगर उसे चूजा निकालत हुआ तो इससे उनके क्या लाभ?
0: कृत्रिम उष्मायन से बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूजों को अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि हमारे भारतवर्ष में प्रचलन है कि सावन के महीने में, नवरात्रि के महीने में हम अंडा और मांस का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम अपनी जरूरत के अनुसार जब बाजार में इसकी ज्यादा जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही हम मशीन में अंडे रखेंगे और चूजों की प्राप्ति करेंगे। मीन्स चूजों की सप्लाई का नियंत्रण हमारे हाथों में है, कम समय में हम ज्यादा चूजे प्राप्त करते हैं। कृत्रिम उष्मायन प्राकृतिक उष्मायन के तुलना में जो चूजों की गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है और साथ ही साथ चूजों में कम बीमारियां अपनी माता के द्वारा स्थानांतरित होती हैं।
1: अच्छा, इसमें कुछ तापमान वगैरह का भी कुछ लोन के ध्यान रखे के होती है ना, तो तापमान का हो एक बारे में बताएं।
0: मैं सारे किसान भाइयों को बताना चाहती हूं कि इनक्यूबेटर मशीन को चलाने के लिए 5 या 6 घटक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सारे घटकों को एक से एक करके आपको समझाना चाहती हूं। कृत्रिम उष्मायन में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक उष्मायन में मुर्गियां अपने शरीर की गर्मी को अंडों को देती है और अपने पैरों से अंडों को पलटती है। सेम प्रक्रिया को हम कृत्रिम उष्मायन विधि द्वारा करते हैं। तो तापमान के लिए हम उस इनक्यूबेटर मशीन में इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगी रहती हैं जो पर्याप्त तापमान देती है। अगर हम मुर्गी के अंडों की बात करें जिससे 21 दिनों में चूजे निकलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो पूरे 21 दिनों तक एक तरह का तापमान नहीं रहता है। इसके पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि बाजार में जो इनक्यूबेटर मशीन उपलब्ध है वो अलग अलग तरह के होते हैं।
1: अच्छा।
0: इनक्यूबेटर मशीन में अगर मुर्गी के अंडों की हम बात करें तो 21 दिन का उनका अवधि काल होता है। इस 21 दिन के अवधि काल को हम दो भागों में बांटते हैं, 18 दिन और 3 दिन का अवधि काल।
1: अच्छा।
0: 18 दिन तक के अवधि काल में अंडों को खड़ा स्थिति में, चौड़ा सिरा ऊपर की स्थिति में रखते हैं। इनक्यूबेटर मशीन के जिस हिस्से में रखते हैं इनक्यूबेटर मशीन के उस हिस्से को हम सेटर कहते हैं। 18 दिनों के पश्चात एक प्रक्रिया है कैंडलिंग, जिसको मैं आगे चल के बताऊंगी। कैंडलिंग प्रक्रिया करने के बाद अंडों का स्थानांतरण हैचिंग ट्रे में किया जाता है।
1: अच्छा।
0: हैचिंग ट्रे में अंडों को 3 दिन तक क्षैतिज स्थिति

0: में रखते हैं। तो जहां तक हम तापमान की बात कर रहे थे, तो तापमान शुरुआत के 18 दिनों में 37.2 से 37.7 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए
1: अच्छा
0: और अंतिम के दिनों में थोड़ा कम 36.7 से 37.2 डिग्री रखना चाहिए। और हमें इस तापमान पर बहुत ही अडिग रहना चाहिए। अगर हम तापमान जो मापक हमने बनाया है उससे अधिक रखें तो चूजे समय अवधि 21 दिन से पहले निकल जाएंगे। वो बहुत छोटे, सुस्त और टेढ़ी गर्दन वाले रहेंगे। अगर हम तापमान मापक से कम रखें तो चूजे निकलने में ज्यादा समय लेंगे, साइज बड़ा रहेगा, वो बहुत ही आलसी किस्म के चूजे रहेंगे। इसलिए गुणवत्ता वाले चूजे प्राप्त करने के लिए तापमान के जो मानक है उसका पूरी तरह पालन करना चाहिए।
1: जिसन की मैडम आप बतावत हैं कि कई दिन तक उनके हैचिंग कल जाला, तो उमे जो अगर लोग बीच बीच में अगर उनके जांच कल चाहस कि का उमे भ्रूण बनत है, तो उकर कितना दिन के बाद वो लोग जांच करा और वो भ्रूण के कैसे वो लोग देखा कि हाँ इमे अंडा में भ्रूण बन गई है।
0: जैसे कि मैंने बताया कि इनक्यूबेटर मशीन में दो भागों में बांटा गया है, सेटर का पार्ट जिसमें 18 दिन अंडे रहते हैं और नीचे का पार्ट हैचर जिसमें 3 दिन अंडे रहते हैं। जब हम अंडे 18 दिन के पूरे हो जाते हैं तो हैचर में ट्रांसफर स्थानांतरित करने से पहले हम उनकी प्रक्रिया करते हैं हैचिंग। हैचिंग वास्तविक में है क्या, अंडों के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनकी वृद्धि हो रही है कि नहीं, उसका परीक्षण करने की क्रिया को हम कैंडलिंग कहते हैं।
1: अच्छा,
0: कैंडलिंग विधि में हमें क्या करना है कि अंडों को एक अंधेरे कमरे में रखकर उसके अंडों के थ्रू हम अंडे से हमें प्रकाश को प्रवाहित करना है। अगर अंडे के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा होगा तो रोशनी अंडों से पार नहीं होगी और अंडे अपारदर्शी दिखेंगे। अगर अंडे के अंदर में भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, प्रकाश आसानी से अंडों से पार होता जाएगा, वो हमें लाल और संतरे रंग के दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया को करने में सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है कि हमें कमरे में अंधेरा होना चाहिए। कैंडलिंग की विधि, हम हो सकता है कि एक अंडे की कैंडलिंग एक बार करें, उसे इंडिविजुअल कैंडलिंग कहते हैं। लेकिन इंडिविजुअल कैंडलिंग की जो बहुत धीमी प्रक्रिया है और हम जैसा हमने बताया कि बहुत ज्यादा चूजों की जरूरत है, हमारे पास मास कैंडलिंग जैसे षड्यंत्र भी है की मदद से हम बहुत सारे अंडों को एक साथ कैंडलिंग कर पता लगा सकते हैं कि क्या उनमें भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है। या नहीं, जिन अंडों से रोशनी आसानी से पास हो जाती उन अंडों को हम निकाल देते हैं और उन अंडों का स्थानांतरण हम हैचिंग ट्रे में नहीं करते हैं और वह जगह जो खाली हुई उन जगहों पे हम नए अंडे रख सकते हैं जिससे 21 दिन बाद नए चूजे मिलेंगे।
1: अच्छा मैडम, ये बताएं हमारे किसान भैया उनके कि जो ने वो ये शब्द आवला ह्यूमिडिटी, ये जो ने कहा जला आद्रता, तो उकर एमे का महत्व होला और कितना ऊ रहे के चाहे।
0: हम सभी इंसानों को, जानवरों को और पक्षियों को और चूजों को जीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए इनक्यूबेटर मशीन में आद्रता की भी प्रबंध किया गया है। यह आवश्यक है कि अंडे प्रतिदिन अपने 21 दिन के अवधि काल में 0.5% वजन कम करें। 18 दिनों तक मशीन में आद्रता 7% होनी चाहिए और अंतिम के 3 दिनों में 70% होनी चाहिए।
1: मैंने पहला 18 दिन में 60% और अंतिम में 70%,
0: मतलब है कि आर्द्रता लास्ट के अंतिम दिनों में अतिरिक्त होती है शुरुआत के 18 दिनों के तुलना में। आर्द्रता अंतिम के दिनों में अच्छी होने से जो डेवलपिंग भ्रूण है उसकी चोच गीली होती है, जिसकी वजह से आसानी से कवच छोड़कर 21 दिन के बाद बाहर आ जाता है। अगर हम आर्द्रता को पर्याप्त नहीं रखेंगे तो अपर्याप्त जल हानि होने से बड़े आलसी फूले हुए चूजे पैदा होते हैं।
1: अच्छा।
0: जो आसानी से कवच से बाहर नहीं आ पाते हैं, कई तरह की स्पुटन की समस्याएं होती हैं। अगर जल आर्द्रता मशीन में कम हो तो जल की हानि अधिक होगी और वैसी स्थिति में हमें छोटे निर्जलीकृत कमजोर चूजे प्राप्त होते हैं और इन चूजों में उतनी ताकत नहीं होती कि उछल के अंडे के छिलकों को तोड़कर बाहर आए।
1: अच्छा मैडम, आप कहते हैं कि 21 दिन में चूजे बाहर निकल जाना कुल, तो जैसे चूजा बाहर निकलत हुआ अंडा से, तो उकरी बात किसान भैया लोग का करस, मैंने वो का कैसे तैयार रहस, कहल जाओ कि भाई जैसे वो बाहर आवस तो उकर खान पान या उनका देख रेख कैसे करें।
0: जब चूजे अंडों से निकलते हैं वो गीले होते हैं और इनक्यूबेटर मशीन से हमें जैसे ही पता चलता है कि चूजे निकले तो हम तुरंत उसे इनक्यूबेटर मशीन से बाहर नहीं रखते हैं।
1: अच्छा।
0: हम 12 से 14 घंटा बच्चों को इनक्यूबेटर मशीन में रहने देते हैं। वहाँ के तापमान के प्रभाव में उनका शरीर सूख जाता है और वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्डनिंग ऑफ चिक। जब ये चूजे थोड़े मजबूत हो जाते हैं तत्पश्चात हम उसे मशीन से निकाल कर एक रोशनी के अंदर में रखते हैं। अब रोशनी की क्यों जरूरत है?

0: और आप कह सकते हैं कि हीट सोर्स के पास हम चूजों को रखते हैं।
1: तो अगर रोशनी की बात आप कहते हैं तो क्या लोग करी खाती बल्ब जलावा या कोनो कैंडल वाली जो ना बात कहते नहीं है वो भी जला सके ना।
0: देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। गांव में हमारे पास जब पहले रोशनी की व्यवस्था नहीं थी तो लोग क्या करते थे कि कोयला जला लेते थे और उससे उस कमरे में तापमान पैदा और गर्मी पैदा करते थे।
1: जी
0: लेकिन दिन पर दिन आधुनिकीकरण के होता गया और नए नए स्रोत तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल हीटर और गैस जैसे उपकरणों का यूज होता गया, जिससे कि चूजों को उनके हैचिंग के कुछ दिनों तक 4 से 5 हफ्तों तक प्राकृतिक रूप से भी तापमान दिया जाए। यह तापमान देना चूजों के उनके हैचिंग के बाद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चूजे जब निकलते हैं तो उनके शरीर का नॉर्मल तापमान 107 डिग्री सेल्सियस होता है और वातावरण का तापमान उससे कम होता है। चूजे जब निकलते हैं उनके शरीर में पंख नहीं होते हैं और उनके मस्तिष्क में जो तापमान नियंत्रित करने वाला जो यंत्र है वो भी उस समय डेवलप नहीं होता है। इसलिए किसान भाइयों की सबसे ज्यादा चूजों की मृत्यु उनके शुरुआती हफ्तों में होती है। इस मृत्यु को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है कि चूजे मशीन से निकलने के बाद उन्हें 4 से 5 हफ्तों तक एक कृत्रिम तापमान हीट दिया जाए।
1: अच्छा
0: इस प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं और इस प्रक्रिया में जिस यंत्र की मदद से हम तापमान या हीट देते हैं उसको ब्रूडर कहते हैं।
1: जैसे कि मैडम आप कहते हैं कि इनक्यूबेटर ये जो मशीन है एक लोग साफ सफाई कैसे रखें और इनमें का क्या ध्यान दें।
0: इनक्यूबेटर मशीन में बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट कैपेसिटी के अलग अलग कैपेसिटी के मशीन आती हैं। हमें किस तरह के इनक्यूबेटर का उपयोग अपने हैचिंग के लिए करना है ये हमारे अंडा उत्पादन पर निर्भर करता है। प्राकृतिक उष्मायन में मुर्गियां 10 से 15 अंडों पर बैठती है, लेकिन कृत्रिम उष्मायन की मदद से हम हजारों लाखों चूजे प्राप्त कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि इनक्यूबेटर की जो कैपेसिटी क्षमता है वो हजारों लाख की होती है। बाजार में 500 से 1000 से 10000, 20000 और लाखों कैपेसिटी की क्षमता के इनक्यूबेटर मशीन आते हैं। किसान भाई अपने अंडों की उपलब्धता के अनुसार अपने इनक्यूबेटर मशीन का चयन कर सकते हैं। जहां तक इसके रख रखाव का बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम अंडा रखते हैं और उसे चूजा प्राप्त करते हैं उसकी साफ सफाई के बाद फिर से हम अंडे रखते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि एक बैच से दूसरे बैच के चूजों में बीमारी का स्थानांतरण ना हो। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको धूमीकरण कहते हैं। धूमीकरण सिर्फ मशीन का नहीं, अंडों का नहीं, चूजा का नहीं, कमरे का, सारे का धूमीकरण किया जाता है।
1: अच्छा,
0: धूमीकरण एक रासायनिक विधि है।
1: अच्छा,
0: इस विधि में हम पोटेशियम परमैंगनेट जिसे सामान्यतः लाल दवा कहा जाता है और फॉर्मेलिन 40% का यूज करते हैं। इसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि हम 2:1 में 2:1 होना चाहिए आपका फॉर्मेलिन का और लाल दवा का 1:1 में हम लेते हैं।
1: अच्छा,
0: जब इन दोनों दवा को जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक धुआं पैदा होता है। ये धुआं सारी जगह पे चला जाता है, ऐसा पूरे जगह को जीवाणु और कीटाणु रिक्त रहित बनाता है, जिससे कि बीमारियों का स्थानांतरण एक बैच से दूसरे बैच में नहीं होता है। किसान भाई धूमीकरण करे तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें। धूमीकरण करने की प्रक्रिया करते समय किसान भाई मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें, क्योंकि यह गैस बहुत जहरीली होती है। धूमीकरण प्रक्रिया करने के लिए हम जब भी किसी कमरे का इनक्यूबेटर का यूज करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद फॉर्मेलिन डालते हैं। उसके बाद जैसे ही धुआं शुरुआत होती है हम कमरे से बाहर चले जाते हैं और 30 मिनट तक इन दोनों को हम आपस में रिएक्शन करने देते हैं। उसके बाद जब कंप्लीट धूमीकरण हो जाता है तब हम कमरे के सारे खिड़की दरवाजे को खोल देते हैं कि कुछ जो गैस यूज नहीं हुई है वो आसानी से कमरे से बाहर निकल जाए। इस तरह से हम अंडों से चूजों और चूजों से फिर से अंडों में होने वाली बीमारी को आसानी से रोक सकते हैं और इनिशियल शुरुआती दिनों में चूजों की जो मृत्यु दर है उनको बहुत ही कम कर सकते हैं।
1: मतलब कि ए विधि से हमारे किसान भैया लोग अगर करें तो मशीन की मदद से भी अंडन से चूजा निकालल जा सकेला।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर अनुराधा कुमारी जी, आप हमने उनके कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया,
3: हाँ नंद भैया,
2: देखा हो कितना निमन बतकही ई रहल ह कि भाई जो मुर्गी हैं उम्मा कृत्रिम तरीके से कैसे गर्मी देवल जाए उन्हें आ जो उनकर बच्चा हो मुर्गी का उनकर हैचिंग जोन कहल जाला कैसे सेवाना वो करल जाए। तो ए विषय पे जानकारी रहल डॉक्टर अनुराधा कुमारी से बतियोले रह सतीश कुमार यादव भैया। आ अब जोन है न अपने पंचायती में हो अपन मन मन सहन जैसे करी ला जा।

0: बाटे सोने के चिरैया हमारे देशवा,
1: भैया
0: श्याम सुंदर पाल भैया कई
1: गवनैया
0: गवनई
1: वाला।
0: रहल है, तो आगे का सुनवात हो नंदू भैया।
1: आगे देखा भोला भैया, अपने पंच लोगन के काल के कार्यक्रम के बारे में बता देवल जाए। जुम्मा बिहाने 6:05 पर हुई खेती का बात।
0: बात
1: एम्मा जवार माने भैया जोन जोनरी होकर खेती कैसे कैल जाए पर जोन है जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंधिया।
0: और सांझी के अपने कृषि जगत कार्यक्रम में भैया विश्व पर्यावरण दिवस और एकर महत्व का हो,
1: भैया
0: एकरे बारे में जानकारी दी हैं श्रवण कुमार यादव भैया। तो
1: तो देखा हो भोला भैया,
0: हाँ नंदू
1: कुलाज का
0: भैया।
1: बतकही हो गई। अब बोलत बतियाओ चले का बेला भी
0: बेला भी
1: होगल,
0: होगा
1: तो चलत है जा पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: इति तेषाम्।
1: संस्कृत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था वेदेषु पर्यावरण चिंतनम्। वार्ताकार थे डॉक्टर पतंजलि मिश्रा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रक्तदान महादान।

रक्तदान करना अपने परिवार की परंपरा बनाइए, क्योंकि ऐसा करके आप न केवल अपनी बल्कि राष्ट्र की भी मदद कर सकते हैं।

एक बार किए गए रक्तदान से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, तो क्यों ना हम एक फैसला लें और रक्तदान का संकल्प लें।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए 16

0: इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जन प्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
3: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश

0: के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रसरंग।

अरिजीत सिंह की आवाज में भी हमने सुना फिल्म पैडमैन का गीत, कैशर मुनीर की बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म प्रेम रतन धन पायो का गीत। आवाज़ थी पलक मुछाल की, इरशाद कामिल के बोल थे और हिमेश रेशमिया का संगीत।

उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। फिल्म थी पिंजर। इस गीत को गाया था जसविंदर नरूला ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना इरशाद कामिल का लिखा गीत, आवाज थी अरिजीत की। इस गीत को गाया था अरिजीत सिंह ने और फिल्म का नाम था तड़प।

कोई जाने ना, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत? आवाज़ थी जुबिन नौटियाल की, गीत लिखा था अमान ने और धुन तैयार की थी कुमार।

ए आर रहमान के गाए फिल्म हीरोपंथी दो के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकार थी आविदा परवीन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है सरकार के 12 वर्ष पूरे

0: उन्हें पर विशेष श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं

0: former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
1: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
2: तो
1: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
1: जी,
2: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
2: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
3: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
3: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
3: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के

0: ये अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दे जा रही हैं, ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से, कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई, आंख का इलाज, ईएनटी, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें, तो 12 पैकेजेस बने। शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
2: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा, देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 52,000

0: करोड़ का फायदा
1: जी
0: जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो
1: जी
0: लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने
1: जी
0: के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए।
1: जी
0: तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो बंधन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और
1: जी
0: उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी एनएफएचएस का डेटा 2 दिन पहले आया है, 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है,
1: जी
2: और
1: जी
2: उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो

0: भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो
1: जी
0: यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या वो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
2: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर 3 साल में, 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता है। आपका मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी, और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बढ़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
0: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में, इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से जेएनके में दो

0: और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं। इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहले, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ease of living, ease of accessing health, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points.

0: दिस इज रिमार्केबल, बिकॉज दिस इज, जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जब भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस, सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया, वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और

0: अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं, किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च।

0: मानसून ने दी केरल में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी

0: हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Keralam. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Keralam, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1 while

0: अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में तशराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को खत्म कर दिया और इस खित्ते को तनाजों के एक मरकज से बदल कर मौके का मरकज बना दिया है। शुमाल मशरकी काउंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मंसूबा बंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमनो कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कानात तलाश करें। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तहत मुत्तहिद हुआ कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेजबान वजीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखिला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के 8 वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहती पर मबनी दुनिया की तरगीब देता है।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
0: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जामे निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, कीनिया और मलेशिया से आने वाले बैन-उल-अक़वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मर्तबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों गजलों कार्यक्रम अंजुमन। अंजुमन सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। लीजिए पेश है कार्यक्रम की पहली गजल।

मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। अभी आप सुन रहे थे ये गजल। लीजिए समाप्त फरमाइए मलिका गजल बेगम अख्तर की गाई ये पुरकशिश गजल।

चल मेरे साथ ही चल ऐ मेरी जानी गजल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंजुमन और यह कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में है।

0: आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

0: क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन। नमस्कार, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं पंडित शिवनाथ मिश्र। आपके साथ तबले पर संगत की है पूरन महाराज ने।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के

0: अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on the expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and